अकाल नमस्कारम, मैं हूं अवि, जुड़ चुका हूं आपके साथ में, लेकर आया हूं जसशील का ये प्रोग्राम फोथेरी फेस्ट ऑफ मई, जबकि मई का आखिरी दिन है, कल से जून की शुरुआत, लेकिन द वीकेंड इज स्टिल यंग, तो ऐसे में एंजॉय करना तो बनता है। और आपके लिए लेकर आया हूं ढेर सारा फन टॉपिक्स और डिस्कशंस, और साथ में बॉलीवुड से कुछ नवीनतम जानकारी, स्पोर्ट्स की दुनिया से ढेर सारे अपडेट्स आपके लिए बारी बारी से बांटता चलूंगा। लेकिन जबकि मैंने अपना जो आज का ट्रेवल शुरू किया है ईस्ट ओकलैंड से लेकर ओकलैंड सीबीडी तक, तो रास्ते में इट वॉज ऑल क्लाउडी थ्रू आउट, और यहाँ आकर जब मैंने वेदर अपडेट पढ़ा है तो ये बताया जा रहा है कि ऑरेंज रेन वार्निंग इन प्लेस है, जबकि ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि साउथ आइलैंड के लिए आज के लिए ढेर सारा हेवी रेनफॉल हो सकता है, और इधर नॉर्थ आइलैंड के लिए कल से फोरकास्ट किया जा रहा है कि काफ़ी जगहों पर बारिश होगी। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहे, कुछ प्लान्स बना रहे हैं तो वेदर कंडीशन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और ऐसे में आज के लिए मोस्टली क्लाउडी विद अ फ्यू शावर्स, स्ट्रॉन्ग इन एक्सपोज्ड प्लेसेस, और साथ में सनसेट एट 5:14 PM, और जो मिनिमम ओवरनाइट टेम्परेचर रहेगा 16 degrees तक। लेकिन काफ़ी जगहों पर पार्टीज हो रही हैं, तो ऐसे में अपना जो डेडिकेशन है, मैसेजेस है, आप 5599 पर हमारे पास में भेज सकते हैं, और साथ में 0800004866 पर आप कॉल करके बातें भी कर सकते हैं। कुछ सुनना है तो आप इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, और यहाँ से आपके चॉइसेस को बिल्कुल प्ले करते चलेंगे। मैं हूँ अभी लेकर आया हूँ ढेरों सारा प्यार आपके लिए 104.2 FM साथ में रोवा पर, मैं आ गया हूँ आपके लिए।

On the waves of hum, मैं हूँ अभी आपके साथ में और जबकि आज 31st of May है, ऐसे में आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी जन्मदिन है या फिर आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की जन्मदिन है, तो इसके बारे में आप हमारे पास में 5599 पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आपकी शादी की सालगिरह है इसका भी जो संदेश है आप हमारे पास में 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको यहाँ से शाउट आउट देते चलेंगे। जबकि टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर देखते हैं तो एक ऐसा सेलिब्रेशन का माहौल पापाकुरा में छाया हुआ है जहां पर जो सेंडा है उनके पेरेंट्स सुकेश और सुनीता लाल पापाकुरा के अपना 40th वेडिंग एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस मौके पर उनको ढेर सारा प्यार मिला है इनके तीन ग्रैंड चिल्ड्रन शायान, शायला और शेन की तरफ से और इनके बेटे हैं शेल्विन और डोटा इन लॉ है शेली, साथ में डोटा है शरल एंड सन इन लॉ शाहरुख। वाओ, यानी कि सास से शायला, सास से शायान, सास से शेन एंड शेल्विन एंड शेली, शरल एंड सन इन लॉ शाहरुख। तो सभी का नाम जो है लेटर एस से शुरू होता है, सुकेश एंड सुनीता, हमारी ओर से आपको हैप्पी 40th वेडिंग एनिवर्सरी, हैव अ वंडरफुल डे, ऐसे में पार्टी तो हो रही होगी कहीं ना कहीं, तो इन्जॉय योर डे, इसी तरह से आप साथ साथ हमेशा रहे, यही हमारी दिलो कामना है, मनोकामना है आपके लिए। तो अगर जो आप भी कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं 5599 इज़ द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर भेजिए और आपको शाउट आउट देते चलेंगे और या फिर कुछ सुनना भी चाहते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं और ऐसे ही ट्रेवल करते करते आप कुछ अलग सुनना चाहते हैं, कोई पर्सनल चॉइस है आपकी, तो नंबर एक ही है 5599 और यहाँ से आपके लिए हम प्ले करते रहेंगे।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Budget Gandhi.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिल्ली से बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिल्ली तो
5: आए आए बताओगे यार.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Petzaras Monaco and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: Farmer's massive King's birthday sale is now on with 30 to 50% off kitchen and dining. Flannelette sheets and duvet cover sets from $49 and 50% off sleepy head beds. Savings fit for a king at Farmer's. Conditions and exclusions apply.
8: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें. सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है. सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड.

हम पर मैं साथी हूँ आपका, अभी बड़े प्यार से आपके लिए आया हूँ आज के दिन, जबकि लॉन्ग वीकेंड है और ऐसे में आपका साथ देते रहेंगे 6 तक। और हमारे पास में एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। क्वीन, आपने लिखा है, अभी ओसम प्रोग्राम, आप मज़ा ले रही हैं, इसी तरह से साथ देते रहिएगा। आप भी किसी कोने से हमें सुन रहे हैं, देश में या फिर विदेश में आप सुन रहे रोबा के द्वारा, तो ज़रूर अपना नाम और पता, यानी कि किस जगह से आप सुन रहे हैं, ये ज़रूर लिख कर भेजिएगा। सुबह सुबह यूएफए चैम्पियंस लीग की जो खेल हुई है, इसमें पेरिस सेंट जर्मेन की जीत आर्सेनल के खिलाफ पेनल्टी किक्स में 4-3 से हुई है। तो चैंपियंस लीग, जो कि पिछले सीजन भी इसी टीम ने जीता था, एक बार फिर आज सुबह सुबह इनकी जीत हो गई है। तो दे हैव वन इट ट्वाइस इन अ रो नाउ। और आर्सेनल काफ़ी क्लोज थी, लेकिन क्या कहें, डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो टाइटल है इनके हाथ तो लग ही गया है। ऐसे में क्या करते हैं, थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं आपके साथ में, एक सवाल पूछते हैं, आपको जवाब पता है तो अपने नाम के साथ में 5599 पर ज़रूर भेजिएगा। मैं अगर जो आपसे कहूँ, इफ 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड, वट आर 4 एंड 5? याद रहे, इफ 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड, What are 4 and 5? फन क्वीज है, इसका जवाब आपको पता हो तो 5599 पर अपने नाम के साथ में ज़रूर टेक्स्ट करना।

0: Just chill.
1: That's right, ये है जस्ट चिल और मैं हूँ अभी आपके साथ में और आशीष वेलिंगटन से हमारा साथ दे रहे हैं. सुन रहे हैं प्रोग्राम को बड़े ध्यान से क्योंकि जो सवाल हमने आपसे किया था, इफ टू इज कंपनी एंड थ्री इज अ क्राउड व्हाट आर फोर एंड फाइव, इसका जवाब सिर्फ आशीष ने अभी तक भेजा है. तो आप भी से अटेम्प्ट कीजिए, इफ टू इज अ कंपनी एंड थ्री इज अ क्राउड व्हाट आर फोर एंड फाइव. तो ये एक फन कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ रहे हैं.

इंटरेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे भी कुछ हमें सुनने को पढ़ने को मिले, तो इसका जवाब 5599 पर भेजिएगा। और ज़्यादा जोर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फन क्विज़ है। इफ़ 2 इज़ अ कंपनी एंड 3 इज़ अ क्राउड, व्हाट आर 4 एंड 5? इसका जवाब 5599 पर भेजिएगा। थोड़ी देर में देखेंगे कि लोग क्या क्या लिखकर भेज रहे हैं हमारे पास में।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर मैं हूं अभी आपका साथी और ऐसे में हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी खुशियों में हमेशा शामिल होते रहें। तो एक बहुत प्यारे से छोटे से क्यूट आयवन चंद आज अपना सेकंड बर्थडे मना रहे हैं और इस खुशी के मौके पर उनके नाना रोहित बड़े ही खुश है और खुशी से झूम रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी है संध्या, यानी कि नाना और नानी रोहित और संध्या की तरफ से ढेर सारा प्यार और दुलार मिला है आयवन चंद को, और साथ में मम एंड डैड है अनिकेत और दिव्या, और इसके साथ में आज योगी शर्मा है एंड मौसा एंड मौसी वरुण एंड प्रिया, और कजन्स है गेवी एंड करिश्मा, और साथ में उनके भाई एकम सिंह है, यानी कि रोहित के भाई एकम सिंह भी वहाँ पर है, सिस्टर समायरा एंड विनी फ्रॉम सिडनी, ये सभी इनको दुलार दे रहे हैं और ऐसे मौके पर, खुशी के मौके पर ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं मेंगरी ईस्ट में। तो आज सेकेंड बर्थडे है आयवन चंद का, हमारी ओर से पूरी की पूरी हम टीम की ओर से आपको आ वेरी हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं आयवन, हैव अ वंडरफुल डे। और अगले इस गीत में आप सभी को शामिल कर रहे हैं जो पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं।

0: show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
5: 6 to 10 a.m. JB Hi-Fi's King's Birthday Mega Deals on now. Save big on phones, TVs, computers and more. Score the Hisense 55-inch smart TV for only $1,868. Ends June 3rd. JB, you've done it again.
6: People of New Zealand, Briscoe's $60 million King's Birthday Sale is on. With $60 million of stock reduced across all Manchester, electrical and the entire store. Shop Briscoe's $60 million King's Birthday Sale on now. See online for T's and C's.
0: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands nahi hai.
8: Just chill.
9: 12 minutes baki, 1 bajne mein Awesome Avi ke saath hai.

0: Just chill.
1: Yo, main hu suta sa chhora.
2: You're listening to Avineet.
3: हम पर हमारे स्टूडियोज में एक बज चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें अगले आवर पर यानी कि दो पर स्ट्रेट आफ्टर न्यूज आपके लिए रहेगा एपिक बॉलीवुड चैलेंज. लेकिन अभी के लिए जबकि जस्ट चिल का प्रोग्राम है और हम आपका फेवरेट बॉलीवुड स्टेशन है, ऐसे में कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज आपके साथ में करते रहते हैं ताकि आपका भी दिल बहलता रहे और आप जब हमें सुन रहे हो कुछ ना कुछ आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें. तो इस आवर की शुरुआत करते हैं आपके लिए एक क्लिप आपको सुनवाने जा रहे हैं विच इज़ अ ब्यूटिफुल अमलगमेशन यानी कि दो अलग अलग फिल्मों के क्लिप्स को मिलाकर एक क्लिप बनाया गया है. चैलेंज आपके लिए यह है कि आपको दोनों आवाजों को पहचान कर यह बताना होगा कि कौन दो कलाकार या फिर कौन दो कैरेक्टर्स ने डिफरेंट मूवीज में ये रोल्स निभाए थे, यानी कि जो कैरेक्टर नेम्स थे इन दोनों कैरेक्टर का नेम आपको भेजना होगा और कौन सी फिल्म में अलग अलग फिल्मों में ये थे. तो दो अलग अलग फिल्मों के क्लिप को मिलाकर आपको सुनवाने जा रहा हूं और इस क्लिप को सुनने के बाद में आपको यही अंदाज़ा लगाना होगा कि जो कैरेक्टर्स है कौन से कैरेक्टर्स है और किन किन फिल्मों के कैरेक्टर्स है. तो इसको ज्वाइन किया गया है थ्रू AI, लेकिन जे सेपरेटली अलग अलग फिल्मों के ये सीन्स थे अब इसको मिलाकर एक में कर दिया गया है. तो इट्स गोना बी क्वाइट चैलेंजिंग एंड फन. तो इसे सुनिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि किन दो अलग अलग फिल्मों से ये दो कैरेक्टर्स है आपको सुनवाने जा रहे हैं. आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. आप
4: हेलो कार्तिक,
5: अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था?
4: तुम कभी मुझे कुछ बोलने नहीं देते हो, प्लीज.
5: रे देवा
4: कार्तिक, प्लीज मेरी बात सुनो.
5: कूतरे साला देख के नंबर डाल कर.
3: हाँ, तो जैसे कि हमने कहा है कि दो अलग अलग फिल्मों के क्लिप्स को मिलाकर एक में बनाया गया है. तो क्या आपको पता लगा कि कौन दो फिल्म्स के अलग अलग कैरेक्टर्स थे ये? और पहला वाला तो शायद बिल्कुल आसान होगा, लेकिन जो दूसरा वॉइस है इस पर वो शायद थोड़ा तकलीफ देगा आपको, क्योंकि थोड़ा पहले आपको समय में जाना होगा और शायद ये फिल्म उतनी चली भी नहीं थी. तो चलो एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं.
5: हेलो
4: हेलो कार्तिक,
5: अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था?
4: तुम कभी मुझे कुछ बोलने नहीं देते हो, प्लीज.
5: रे देवा
4: कार्तिक, प्लीज मेरी बात सुनो.
5: कूतरे साला देख के नंबर डाल कर.
3: हाँ, तो बस आपको ये बताना है कि कौन दो अलग अलग फिल्म्स के ये कैरेक्टर्स थे जो जिनकी सीन्स को आपस में मिलाया गया है. बस इतना ही चैलेंज है. 5599 पर आपको अपना जवाब भेजना है. लेट्स सी आप में से कितने लोग इसको पहचान पाते हैं या फिर सही जवाब दे पाते हैं.

0: हेलो
1: हेलो कार्तिक,
0: अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था?
1: तुम कभी मुझे कुछ बोलने नहीं देते हो, प्लीज।
0: रे देवा
1: कार्तिक, प्लीज मेरी बात सुनो।
0: कूतरे साला देख के नंबर डाल कर।
2: हाँ, तो ये आपको जवाब देना था कि कौन दो कैरेक्टर्स अलग अलग मूवी से हैं जिनको मिलाकर एक ही इस क्लिप में बनाया गया है, और ऐसा लग रहा है कि वन इज कॉलिंग दिया था। तो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है, और एक और एक गाना आपको सुनवाते हैं और इसके बाद में फिर प्लेटफॉर्म की ओर देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अंजू हैमिल्टन से ट्रेवल कर रही है एंड विद लिमिटेड नेटवर्क, यानी कि रास्ते में है, और ऐसे में हमने सोचा चलो सबसे पहला पहल आपको याद कर ले ताकि आप नेटवर्क रेंज में हो तो आप सुन सकें कि हमने आपको शामिल किया है। इसके बाद में फिर एक गाना के बाद में देखेंगे कितने और लोगों ने जवाब दिया है, और बारी बारी से आपका नाम लेते चलेंगे। एंड अभी के लिए प्रोग्राम में शामिल करते हैं जुबिन नौटियाल को। हम पर, मैं हूँ अभी आपके साथ में।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी, और जो आवाज़ें हमने आपको सुनाई थी ये तो पहले कलाकार थे परेश रावल और दूसरे थे फरहान अख्तर। तो अगर जो फिल्मों की बात करें, परेश रावल फ्रॉम हेरा फेरी और साथ में फरहान अख्तर फ्रॉम कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, तो ये दोनों फिल्मों का जो सीन्स है जहाँ पर ये दोनों एक्टर्स फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इनको मिलाकर एक क्लिप बनाया गया है और काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। प्रीतिका ने विमोद से जवाब दिया है, आपने सही अनुमान लगाया है, आपका अंदाज़ा सही था। इसके साथ में हमारे पास में एड्रीन, आपका भी जवाब मिला है, और साथ ही साथ में रूही फ्रॉम ओरहू, आपने भी सही पहचाना। इसके साथ में अंजू जो हैमिल्टन से ट्रेवल कर रही हैं करंटली विद द लिमिटेड नेटवर्क, और इसके साथ में नीनू है, और नीनू ने भी सही अंदाज़ा लगाया। साथ में दिया हमारा साथ दे रही है, आपका भी जो आंसर है बिल्कुल सही है। इसके साथ में 7214 आपने भी सही पहचाना, और मुझे इस बात की हैरानी थी कि काफ़ी लोगों ने पिकआउट कर लिया कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से फरहान अख्तर की आवाज़ थी, क्योंकि ये जो फिल्म थी मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा नहीं चली थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए, रवि फ्रॉम NZ फोक हो इस लिमिटेड, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपने भी इसका सही जवाब हमारे पास में भेजा है। इसके साथ में एक और एक साथी है भाविक, आप भी सही जवाब आपका ठहरा है। इसके साथ में प्रीति ने भी अपना जो जवाब है सही लिख कर भेजा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और अवी ने हमारे पास में मैसेज किया है, तो ये तो अवी टेक्स्टिंग अवी हो गया, तो अवी ने भी सही जवाब भेजा है। और इसके साथ में और लोगों ने दिया है, फाल्गुनी भी साथ दे रही है, फाल्गुनी ने भी सही पहचाना। सुरुचि, थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। और इसके अलावा जबीना जो सबसे पहला पहल आपने मैसेज भेजा था, थैंक यू सो मच। तो याद रहे, दो पर आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज भी रहेगा, इसमें भी आप ज़रूर पार्ट लीजिएगा, ये सभी कुछ आपके साथ में। और इन द मीन टाइम थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट। तो स्ट्रेट आफ्टर टू आपके लिए एपिक बॉलीवुड चैलेंज भी रहेगा, जितने लोगों ने जवाब दिया है आप सभी के नाम, ये अगला गाना।

0: Backyard Beats.
1: हम पर पूरे के पूरे मई के महीने में आपके लिए हम लेकर आ रहे थे NZ म्यूजिक मंथ, जहां पर लोकल आर्टिस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और जबकि आज इस महीने का आखिरी दिन है, तो आज ही इसे राउंड अप किया जाएगा। और अगर जो अभी तक आपने वोट नहीं किए हैं, तो 5599 पर विद द कीवर्ड MM लिखकर आप अपने फेवरेट लोकल आर्टिस्ट को वोट कर सकते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ योर वोट्स ये जो सिलेक्शन है टॉप 3 आर्टिस्ट का किया जाएगा, जैसे नील पटेल जैसे कलाकार थे, अविशी जैन जैसे कलाकारा थी, और साथ में अहफाज लालवानी थे, और साथ में सेंसी प्रभाकर, रांझा रांजन, और साथ में संदीप लुबाना, एंड लॉट्स ऑफ टैलेंटेड आर्टिस्ट जैसे नील पटेल और आर्यन भाटिया, और एक ऐसे और कलाकार थे भास्कर प्रधान, जिन्होंने आकर अपने गाने को सुनवाए हैं आपको। तो अगर जो आपको इनमें से किसी का भी गाना पसंद आया, तो उनके लिए वोट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अभी के लिए आपको सुनवाने जा रहे हैं NZ म्यूज़िक मंथ के, जबकि आखिरी दिन है ये, तो भास्कर प्रधान को आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये भी सुनिएगा और लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहिएगा।

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. गूगल PFSL today and Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
1: Bunnings does have heaps of things you can do to keep your home winter ready. No one likes a draft. We've got door seals, window seals, moisture absorbers, make sure nothing's getting too damp. Little things make a big difference.
2: Moriday MDS5 screw-on silver door seal, only $27.51. HPM 3-in-1 bathroom 2 heat fan and light, $141.80. Click 2000 watt upright desktop fan heater, just $15.
1: We can help you get winter ready for less. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.

0: fridge freezer with Wi-Fi, just $9.99. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
1: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
2: noodles,
1: or fashion,
2: gorgeous,
1: or even a shiny new appliance,
2: shiny,
1: money loops back. Get in the loop for cash back shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Just chill.
5: जशिल में अभी का साथ है और जो कलाकार को आप सुन रहे थे, आपने हमारे पास में टेक्स्ट किया है कि आप जानना चाहते थे कि किस भाषा लैंग्वेज में ये गा रहे थे, तो ये भास्कर प्रधान जो हैं ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो अपने लैंग्वेज में ही इन्होंने ये गाना गाया था, जबकि इनको हमने शामिल किया था एनजेड म्यूज़िक मंथ के लिए अपने लोकल आर्टिस्ट की तरह, तो इनको आप सुन रहे थे। अगला जो गाना बजाने से पहले आपको छोटा सा ट्रिविया बताते चले, ये जो गाना है शान की आवाज़ में अगला बजाने जा रहे हैं, जबकि ये हमने लिया है फिल्म 3 Idiots से, तो जबकि शान को उस फिल्म में एक और गाने का मौका मिला था प्लेबैक करने के लिए, उसका नाम था All Is Well, और उस समय पर शान वॉज सपोज टू सिंग एज अ मेन लीड फॉर आमिर खान, लेकिन फिर कुछ चेंजेस हुए और फिर सोनू निगम स्टेप्ड इन टू सिंग दैट सॉन्ग, और फिर शान से गवाया गया जो गाना अगला हम बजाने जा रहे हैं। और शान ने जब पहले पहल इस गाने को सुना तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये मुझे किसी नेसरी राइम की तरह लगा, क्योंकि काफ़ी वैसे टेम्पो थे, काफ़ी वैसे बीट्स थे जैसे कि नेसरी राइम्स के होते हैं, और गाने से पहले वो थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उनके लिए ऑल इज़ वेल वॉज अ मोर पॉपुलर नंबर, तो लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर ने किसी तरह से उनको कन्विंस किया कि नहीं नहीं आप ये गाइए, और गाने के बाद में अगर जो देखे तो ये गाना जो है आज भी लोगों के जहन में है और इसे सुनना लोग बेहद पसंद करते हैं, तो उसी गाने को आपको सुनवाने जा रहे हैं जो शायद शान गाने से पहले थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, लेकिन बाद में काफ़ी पॉपुलरिटी उनको इस गाने से मिली। अगर जो आप शान के बारे में जानना चाहते हैं और, तो आने वाले एक सीरीज़ में, ब्राउन सीरीज़ में ये नज़र आएंगे अपने एक्टिंग डेब्यू को करते हुए।

आप सुन रहे थे एक ब्यूटीफुल नंबर बाय अभिजीत, और जब भी गाते हैं दिल को छू जाते हैं। 20 मिनट बाकी है दो बजने में, दो पर आपके लिए समाचार रहेंगे। समाचारों के ठीक बाद आपके लिए लेकर आएंगे एपिक बॉलीवुड चैलेंज। ये सभी कुछ हमारे साथ में रहेगा, जबकि जसचिल का ये कारवां है ऑन द 31st ऑफ मई 104.2 FM, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। इसी तरह से सुनते रहिएगा।

0: ब्रांच भी है।
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: रियल साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है, ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर, फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड, स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर, सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास, हर बार क्लासिक हो या रागी, मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर, सब मिलेगा। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर लिव बेटर।
2: Stock up and save with multi-buys at Liquor Centre. Absolute Vodka, Baileys, Ballantine's, Bell's Whiskey or Karuba 1 litre, any two for $99. Liquor Centre, we're big on being local.
3: This King's Birthday weekend, save up to 70% off at Bargain Blinds and Curtains. Sleep like royalty in elegant chairs or prep for winter with thermal lined curtains. Shop the Royal Sale at bargainblinds.co.nz now.

0: Just Chill.
1: जस्ट चिल में चिल करते हुए मैं हूँ अभी आपके साथ में. और जबकि कल सुपर रग्बी के कुछ फाइनल राउंड के मैचेस हुए जिसमें क्रुसेडर्स की शानदार, सॉरी ये तो फ्राइडे की हुई, लेकिन जो कल खेल हुए इसमें ब्रम्बीज और मोआना पैसिफिका के बीच में जो खेल हुआ, मोआना पैसिफिका ने ब्रम्बीज को 21-19 से हराया. इसके साथ में एक और एक खेल में जो मैं कल बैठ कर बड़े उम्मीद के साथ में देख रहा था, चीफ्स ने ब्लूज को 59-34 से हराया. और इसके साथ में अन्य खेल में फोर्स एंड वोराटास के बीच में जो खेल हुई वहां पर फोर्स की जीत 31-25 से हुई. और जो खेल फ्राइडे को हुआ था इसमें क्रुसेडर्स की जीत हरिकन से 47-14 से थी. और साथ में रेड्स ने फिजन ड्रुआ को 45-24 से हराया. इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन राउंड के मैचेस है टॉप सिक्स नॉकआउट, इसमें क्वालिफाई हुई हैं हरिकन्स, ब्रम्बीज साथ में क्रुसेडर्स और ब्लूज और वेकाटो चीफ साथ में क्वींसलैंड रेड्स, द ओनली द सेकेंड ऑस्ट्रेलियन टीम रादर. और हरिकन्स और ब्रम्बीज के बीच में जो खेल है ये वेलिंगटन में रहेगी. क्रुसेडर्स और ब्लूज के बीच में जो खेल है ये क्राइस्टचर्च में रहेगी. इसके साथ में चीफ्स और क्वींसलैंड रेड्स ये हैमिल्टन में खेल खेलेंगे. तो ये सभी कुछ जो सुपर रग्बी के बीच में बारे में अपडेट्स थी आप तक ला रहे थे.

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, अभी का साथ है। 2:02 हो चुके हैं जबकि जस्ट चिल का ये कारवां है 31st of May। तो ऐसे में 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं, आपका खास स्वागत करते हैं। एंड इट इज़ टाइम टू प्ले एपिक बॉलीवुड चैलेंज जो हर संडे आपके लिए हम लेकर आ जाते हैं। खेल बड़ा मज़ेदार और सिंपल, आपको हम यहाँ से क्लूज बताते हैं। बेस्ड ऑन दोज क्लूज और जो ट्रिविया हम आपको देते हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है कि किस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उस गाने को पहचान कर सबसे पहले जो जवाब भेजता है अपने नाम के साथ में, याद रहे नाम लिखना ज़रूरी है, और जो अपने नाम के साथ में गाना जवाब में भेजता है वही ठहराता है उस वीक का विनर। जैसे कि लास्ट वीक गौरव नायक ने दिल धड़कने दो से गल्लन गुड़िया गाने को पहचाना था और ऐसा करते उस वीक के विनर गौरव ठहरे थे। तो आज एक और एक गीत है जिसके बारे में आपके साथ में शेयर करेंगे। 5599 इज द नंबर जहां पर आपको टेक्स्ट करना होगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग और आपको सुनवाने जा रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल तैयार रहिएगा, फ्लेक्स योर फिंगर्स बिकॉज हियर इट गोज। त्रिदेव 1989, विश्वात्मा 1992, गुप्त 1997, इन तीनों फिल्म्स के डायरेक्टर एक ही है, राजीव राय। और आज जिस राजीव राय डायरेक्टर फिल्म को हमने लिया है वो फिल्म विश्वात्मा और गुप्त के बीच में रिलीज हुई, यानी कि अगर जो देखे तो 1992 और 1997 के बीच में ये फिल्म रिलीज हुई। और राजीव राय ने काफ़ी काम म्यूज़िक डायरेक्टर विजू शाह के साथ में किया है, और इस फिल्म में भी विजू शाह ने म्यूज़िक दिया है। विजू शाह इज़ द सन ऑफ कल्याण जी वीर जी शाह, जो कि एक म्यूज़िकल जोड़ी थी, बनी थी कल्याण जी आनंद जी की। तो उनमें से जो कल्याण जी थे उनके सन विजू शाह है। अच्छा, विजू शाह के आप गाने सुनेंगे तो आपको ये फील होगा कि उनके म्यूज़िक में एक अलग एक रिदम है, क्योंकि विजू शाह को पहचान भी मिली थी उनके हाईली एनर्जेटिक ट्रिक्स के लिए, और वो इस्तेमाल भी इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर्स, ड्रम मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स को ज़्यादा करते हैं टू गिव दैट हाई एनर्जी वाइब। अगर जो आप देखें तो गुप्त में भी ऐसे कई गाने थे जिसमें बीच बीच में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर की म्यूज़िक या बीट आपको सुनने मिलेगी। इस फिल्म में थे स्टारकास्ट की ओर देखें तो अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और रेविशिंग रवीना टंडन, और कास्ट में थे नसीर उद्दीन शाह, परेश रावल और सदाशिव अमरापुरकर जैसे एक्टर्स। कहानी शुरू होती है विशाल सुनील शेट्टी के साथ में, जो कि जेल में है, कन्विक्टेड ऑफ मर्डर्स, और रवीना जो कि प्ले करती है एक मीडिया पर्सनालिटी, उनको छुड़वाने के लिए, उनको रिलीज़ करने के लिए एक प्रपोजल फाइट करती है, और फिर सुनील शेट्टी को यूज़ किया जाता है टू एलिमिनेट सम टारगेट्स। इंस्पेक्टर अमर प्लेड बाय अक्षय कुमार उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट भी है जो इस फिल्म को एक सस्पेंस का टच देता है। इस फिल्म के गाने को रिक्रिएट भी किया गया है जिसमें है टिप टिप बरसा पानी, जिसे एक बार फिर अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन ये वो गाना नहीं है। आज का चैलेंज इस गाने पर नहीं है। इस फिल्म में अगर जो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो ड्रग्स का भी एक एंगल है, और साथ में जबकि मैं इसे आज रिविजिट कर रहा था तो ड्रिंक्स स्पाइक भी किए गए हैं इस फिल्म में, बैक इन द 90s इसको दिखाया गया था। तो एक सीख ये भी है कि आज भी अगर जो आप किसी जगह पर हो तो अपने ड्रिंक्स को अनअटेंडेड नहीं छोड़े, क्योंकि ड्रिंक्स को स्पाइक किया जा सकता है और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और वापस अगर जो गाने के ऊपर आते हैं तो गाना एक सिचुएशनल सॉन्ग है जो एक क्लब में है, और अक्षय और रवीना डिस्गाइज किए हुए हैं, इस डांसर्स परफॉर्म करते हैं और तभी ये गाना प्ले होता है। एक रेजिंग हिट सॉन्ग, और इसको भी एक डिस्कोथेक में फिल्माया गया, जबकि आपको याद होगा इसी मेकर का एक और एक गाना था जो डिस्को में शूट हुआ था किनिया में, सात समुंदर पार। तो उसके बाद में ये गाना जो है ये भी एक डिस्को में फिल्म किया गया था। अक्षय को आपने देखा था एक ब्लेजर पहने हुए, बेंडाना, और इस गाने का फील एक फ्यूजन कव्वाली का है। बीच में जो आलाप है उसे परेश रावल निभाते हैं। इस गाने के बारे में बोलते हुए डायरेक्टर ने बताया कि आनंद बख्शी को ये गाना लिखते हुए काफ़ी समय लगा, क्योंकि इस गाने के बोल में वर्ड्स काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। वर्ड्स जैसे मस्त, जोश, मार, यार या सख्त, इस शब्दों को काफ़ी बार रिपीट किया गया है। तो इसको लिखने में गाने भर में डबल बार यूज़ किया गया है, तो लिखते हुए काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। इस गाने के बाद में रवीना को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इसको रेफा भी किया गया एज द मस्त मस्त गेल। एक ट्रिविया आपके लिए ये है कि इस फिल्म में पहली बार अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी को एक साथ में देखा गया, तीनों को। फिर बाद में इन तीनों ने बहुत फिल्म्स में साथ में काम किया। फिल्म एक ब्लॉकबस्टर थी और ये गाना एक रेज था। इस गाने को शूट भी बड़ी मुश्किल से किया गया। अगर जो आपको जवाब पता लग रहा है तो 5599 पर आप हमारे पास में इस गाने को टेक्स्ट करें। और फिल्म एक ब्लॉकबस्टर भी थी और इस गाने का एक रेज भी थी। इस गाने को शूट भी बड़ी मुश्किल से किया गया था। कोरियोग्राफर चीनी प्रकाश ने बताया कि अक्षय और रवीना दोनों बहुत बिजी स्टार्स थे उस समय। तीन तीन शिफ्ट करने के बाद तब कहीं थोड़ी देर के लिए इस गाने को शूट किया करते थे। कोरियोग्राफर को भी गाने को लेकर डाउट हुआ था, तो उन्होंने विजयू शाह से कहा, यह गाना कैसे चलेगा, कव्वाली का साउंड आ रहा है। और फिर विजयू शाह ने कहा, दिस विल बी द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म एंड एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अगर जो आपको इन क्लूज के बेसिस पर पता लगा है, आइडेंटिफाई कर पा है किस गाने के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 5599 पर अपने जो जवाब है भेज दीजिए। तो अभी के लिए आपको सुनवाने जा रहे हैं दिस सॉन्ग फ्रॉम द सेम फिल्म, 1994 की ये फिल्म है जिसका नाम था मोहरा, एंड गाना इज दिस।

जी हाँ, बस इसी गाने को आपको आइडेंटिफाई करना था। और जबकि एपिक बॉलीवुड चैलेंज में आपके लिए आज इस 90s के गाने को हमने लेकर आया था, और मोहरा से। अगर जो आपने इस फिल्म को रिविजिट नहीं किया है तो इट इज़ अ गुड टाइम, जबकि काफ़ी अच्छा एक फिल्म की स्टोरी और विद अ गुड सस्पेंस एट द एंड। इसके बारे में तो नहीं बताएंगे क्योंकि शायद आपने नहीं इसे चेकआउट किया होगा, तो इट इज़ अ गुड टाइम, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर जो देखें अपने टेक्स्ट प्लेटफॉर्म की ओर, तो हमारे पास में रहना, साथ में सूरज और साथ में पंकज ने मैसेज भेजे थे। इसके अलावा 72247 आपका भी जवाब आया था, और फाल्गुनी आपका भी मैसेज हमको मिला। इसके अलावा 0793 आपने भी सही पहचान कर जवाब भेजा। फाल्गुनी आपका भी जवाब आया, आज थोड़ा देर हो गया आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आपका मैसेज हमको मिला। इसके साथ में एश फ्रॉम वेलिंगटन आपने भी सही पहचान कर जवाब लिखा हमारे पास में, थैंक यू सो मच। लेकिन आज की जो विना ठहरी है ये है आराधना, जबकि सबसे पहला पहल इनका जवाब हमारे पास में आया था और सही आइडेंटिफाई करके अपने नाम के साथ में आपने भेजा। आराधना कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस वीक की विना आप ठहरी है। आपके जवाब और एश के जवाब में शायद कुछ सेकंड्स का ही अंतर था, जबकि आप केम आउट ऑन द टॉप विद द फर्स्ट मैसेज। तो आप सभी के नाम ये अगला जो गाना है करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन इट। और जबकि आपको मालूम होगा कि अब तो मैं छुट्टियों पे जाने वाला हूँ, तो शायद आपके लिए ये चैलेंज नहीं लेकर आ पाऊँगा कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन जब भी आके आपके साथ में वापस जुड़ेंगे तो एक बार फिर ये चैलेंज को वापस रिवाइव करेंगे, आपके साथ में खेलेंगे। लेकिन आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। ये अगला गाना आप सभी के नाम, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस आराधना। Say whoa!

0: That's right. It's Wow with Avi and हम पर मैं हूँ आपके साथ में छः तक आपके साथ देता रहूँगा. तीन के बाद में कोशिश करेंगे कि आपकी किसी एक स्पेशल गेस्ट के साथ में बात करवाएंगे और जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है इस पर अपडेट्स आपको देते चलेंगे. इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड एंड कीप हमिंग.
1: ये चांद सा रोशन

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
2: noodles,
1: or fashion,
2: gorgeous,
1: or even a shiny new appliance,
2: shiny,
1: money loops back. Get in the loop for cash back shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
3: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an adored fabric draft stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
4: Celebrate the King's birthday with a super hot deal at Liquor Centre. Jim Beam 1.125 litre, only $51.99. Valid 28th May to 1st June. Liquor Centre, we're big on being local.
5: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas, har bar. Classic ho ya ragi, multigrain ya medu vada batter, sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste, bilkul free. Limited time offer, 31st May tak. Kashish Foods, eat better, live better.
6: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
9: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
10: Zabardast hits.
11: Shuru ho jaye to rukte nahi.
10: Playing Bollywood's biggest hits.
12: Hum. जी हाँ, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं हूँ आपके साथ में अभी। और आपको बता दूं कि जबकि कल हम मनाने वाले हैं किंग्स बर्थडे, तो ऐसे में क्या आपको मालूम था कि जो किंग का एक्चुअल बर्थडे है ये नवंबर 14 को वैसे पड़ता है, लेकिन इसे 1st of June क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रिटिश ट्रेडिशन है, एक प्रथा है, जहाँ पर जो बर्थडेज है इनके लिए, जो मोनार्च है इनके लिए, प्लेजेंट समर वेदर में ही इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए विद ग्रैंड परेड्स। तो ऐसे में दो बार सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल बर्थडे इनका नवंबर 14 का है। और यूके में शायद समा के कारण इसी जून में ही, एली जून में किया जाता है, तो इस कारण से कल हमको भी छुट्टी मिली है, आपको भी मिली है, इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए जबकि लॉन्ग वीकेंड है। तो ऐसे में आप कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, या फिर किसी का बर्थडे अगर जो किंग चार्ल्स के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, तो आप तारीफ में यही कह सकते हैं, भाई जन्मदिन हमारा है लेकिन हमने आपको भी छुट्टी दे दी है।

हम पर आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह साथ में नीति मोहन को, और 3 बजे के बाद आपसे कोशिश करेंगे कि आपकी बातें करवाए आशनी माश के साथ में। और आशनी माश जो कि फिजी से ओरिजिनली है और यहाँ न्यूजीलैंड में काफ़ी वर्षों से रह रही हैं और अभी हाल ही में वो ग्रेजुएट हुई है, और इनके बारे में कुछ स्पेशल स्टोरी है और इनके चैलेंजेस को लेकर आपसे बातें करवाएँगे, ताकि कहीं ना कहीं हम कभी भी जब भी स्ट्रगल करें तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर हमें भी कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिले कि जो चैलेंजेस है रास्ते में ये पार हो ही जाएंगे। तो यही मोटिव के साथ में 3 बजे के बाद में आपसे कोशिश करवाएंगे कि ओने लेकर आए आशनी माश को और इनके चैलेंजेस के बारे में आपको सुनवाएं, ताकि अगर जो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन से आप थोड़े नाराज़ हैं तो इसको सुनकर आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो जाएंगे। 20 मिनट बाकी है 3 बजने में, और 3 बजे के बाद में अपने गेस्ट को ओने लेकर आएंगे आपके लिए।

हम पर आप सुन रहे हैं जसचिल का कारवा है और 3 बजे के बाद में आपसे बातें करवाएंगे आशनी माश से, जिन्होंने फिजी से आकर कुछ 3 decades बैक और एक हम्बल येट डिग्निफाइड बिगनिंग यहाँ न्यूजीलैंड में की थी। एक सुपरमार्केट चेन में इन्होंने काम किया और अब जाकर इन्होंने इतने सालों के बाद में अपने ग्रेजुएशन को हासिल किया है, जबकि इन्होंने बैचलर ऑफ अप्लाइड सोशल वर्क डिग्री को अटेन किया है। तो ऐसे में 3 बजे के बाद में इनसे बातें करेंगे कि इनकी लाइफ जर्नी कैसे रही है, ताकि हम लोग जितने सुन रहे हैं, आप में से, हम में से जितने भी लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइफ के चैलेंजेस को लेकर परेशान हैं या फिर थोड़े से वेट डाउन है या फिर एक मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है, तो ये सभी कुछ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने सफ़र पर डटे रहें, आगे बढ़ते रहें। ये सभी कुछ 3 पर आपके साथ में रहेगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप हमिंग।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर रवि का साथ है और जबकि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी बातें करवाएंगे आशनी माश के साथ में, जो कि तीन डिकेड से न्यूजीलैंड में है और एक बहुत ही हम्बल येट डिग्निफाइड रोल के साथ में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी यहाँ पर, और फिर उसके बाद में कहीं जाकर कई चैलेंजेस को सामना करते हुए, और अभी हाल ही में इन्होंने अटेन किया है बैचलर ऑफ अप्लाइड सोशल वर्क डिग्री, और इस क्वालिफिकेशन को हासिल करने के बाद में जो लाइफ में स्ट्रगल या चैलेंजेस इसके साथ में थी, ताकि आप इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर हो सके, इसीलिए हमने सोचा कि इस मौके पर उनको ओनिया लेकर आया जाए और ताकि आप भी इनके जेनी से कुछ ना कुछ सीख सके, इंस्पायर हो सके। तो आशनी, आपका स्वागत है हम पर।
2: थैंक यू अभी जी।
1: ओके, क्या हो रहा था आशनी?
2: बस कुछ खास नहीं, आज तो संडे का मौसम है तो थोड़ा शॉपिंग वगैरह कैफे के लिए बस चल रहा था।
1: Well, that's very good to have you on air. और जबकि मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था ऑनलाइन, और आप फिजी से हैं, और आपके आपके आर्टिकल सुनकर पढ़कर यही मुझे लगा कि आपसे कुछ ना कुछ बातें हो सके, ताकि आपके चैलेंजेस को लेकर लोग कुछ सीख सकें। तो आपसे पहला पहल हमारा सवाल ये है कि आप फिजी किस जगह से बिलोंग करती हो?
2: मैं वरंडोली बास से हूँ।
1: अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और इट हैज बीन अराउंड 3 decades जबकि आप यहाँ पर न्यूजीलैंड में हो?
2: हाँ जी बिल्कुल।
1: ओके, और आप हमें ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी यहाँ पर, तो उन दिनों आप डिस्क्लोज करना चाहती है कि क्या जॉब इनफेक्ट आप कर रही थी चेन सुपरमार्केट में?
2: तो जब मैं आई थी अभी जी, मेरा कोई इमीडिएट फैमिली नहीं था यहाँ पर न्यूजीलैंड में, तो मेरे माता जी पिताजी मेरे घर से सिर्फ मैं ही फर्स्ट पर्सन ओवरसीज आई थी, तो मुझे बहुत बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा यहाँ पर। मेरे पास गाड़ी नहीं था, हमारे पास उतना नॉलेज भी नहीं था कि न्यूजीलैंड में वेदर कैसा रहेगा, तो मैं सिर्फ 3 जोड़े वो समर ड्रेस लेकर आई थी, और मुझे ख्याल से था $100 जो है $100 लेकर आई थी। फिर मुझे जो भी काम मिला मैंने अपने से, मुझे सर्वाइवल में, मैं सर्वाइवल मोड में चली गई थी, तो इसलिए मैं अपनी शुरुआत की थी काउंटडाउन बेकन हेड में, और मैं रही थी बेगडल और इसदल कॉर्नर ऑफ वहां पर। तो मैं बहुत साल मैं पैदल चल के, चाहे रेन हो, चाहे घाम हो, चाहे ठंडी, चाहे गर्मी, मैं इसी से अपना लाइफ शुरुआत की थी।
1: वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। तो देखिए, जो लोग हम में से कहीं ना कहीं फ्लैटिंग करते हैं या फिर एक कमरे से शुरुआत करते हैं, उसको वहाँ पर फ्लैट करके और अपने करियर की शुरुआत करते हैं या न्यूजीलैंड में या लाइफ की शुरुआत करते हैं, तो आपका जो स्टोरी आपने शेयर किया है, ये कहीं ना कहीं हमको इनक्रेज करेगा।
2: हाँ जी, तो मैं शुरू में डोनट, मेरा काम मिला डोनट बनाने का, मैंने वहाँ से अपना शुरुआत किया डोनट से, फिर डोनट मेकिंग किया, फिर उसमें मेरा प्रमोशन हुआ, मैं चेकआउट में चली गई। उस समय मैं यूथ रेट में थी, $7 आवा था मेरा पे रेट, और $330 मेरा रेंट था एक रूम का। तो इसी से मैं अपना लाइफ शुरू की।
1: ओके, क्या आप डिस्क्लोज करना चाहती है कि अब आर्टिकल में तो लिखा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे उन्हें पूछना चाहता हूं, ताकि कभी कभी लोग सोच लेते हैं ना कि इट्स टू लेट फॉर मी, तो मैं इसी कारण से पूछना चाहता हूं, क्या आप डिस्क्लोज करना चाहती है कि किस उम्र में आपने जाकर अपने क्वालिफिकेशन को अटेन किया है?
2: तो मैं जब शुरुआत थी अभी जी, मैं एक पाथवेज ली थी, तो जो बैचलर्स का डिग्री करना था वो बिफोर उसका एक रिक्वायरमेंट था आईएलटीएस करने का, तो मैं उस दिन मैं इतनी डर गई थी, तो मैंने सोचा जब मेरे हस्बैंड से बात हुई, मेरे हस्बैंड का एक जेनी था, वो कैंसर सर्वाइवर है, तो उन्होंने मुझे बोला, उस दिन मेरा बच्चा सिर्फ 3 साल का था हमारा बच्चा, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो तू कुछ पढ़ लो जस्ट इन केस, वो बोला मैं आगे चलकर कैफे का शुरुआत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि शायद मेरा हेल्थ नहीं ठीक रहेगा, तो आप कुछ पढ़ाई कर लो, आप यू नो फॉर योर बच्चे के लिए भी अच्छा अच्छा जिंदगी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं एक पाथवेज ली थी, सोशल वर्क सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क लेवल 4 का था। मैं उस टाइम 45 इयर्स की थी जब मैंने शुरू किया था। फिर उसके बाद में एक साल मैं वो की, फिर मैं 4 साल का डिग्री किया।
1: ओके, एंड ऑल थ्रू आउट आप काम भी करती रही और पढ़ती भी रही।
2: हाँ जी, हाँ जी, मैंने काम किया। मैं उस दिन एक वो जो है ICC का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का काम करती थी, तो मैं वहाँ पर करती थी। उस समय मेरे हस्बैंड का फादर भी हमारे साथ में था और वो एक बहुत बुजुर्ग था, तो उसको भी मैं रात कर जाग कर मैं आई यूज टू मेक श्योर कि वो कभी जैसे डेटी डायपर में कभी सोया नहीं। मेरा एक वो था कि वो बुजुर्ग है, उसको भी डिग्निटी के साथ जीना चाहिए।
1: तो आपने पूरी तरीके से अपने सभी रोल्स को बैलेंस किया।
2: हाँ जी, उस दिन फिर मेरा हस्बैंड का, मेरा बेटा 3 इयर्स का था अभी जी, मेरे हस्बैंड के बहुत भारी 11 घंटे का सर्जरी हुआ था। फिर उसका वो ट्यूमर वो उन्होंने निकाला, फिर वो फिर चले गए, उनका एक रिवर्सल में जाना था ना, तो वो गया, फिर उसका पूरा गट ही लीक हो गया था, तो वो 9 डेज लाइफ सपोर्ट में था। तो मैं अपने पूरी तरह से, इधर मेरे फादर इन लोग बुजुर्ग थे, वो थे लगभग में 92 के उम्र उसकी थी, मेरा हस्बैंड था हॉस्पिटल में, फिर मेरा बेटा था 3 साल के, और मैं पूरी तरह से काम भी कर रही थी उस टाइम।
1: Wow, such an amazing story to hear. ताकि लोग काफ़ी समय जो ढेर सारे बोल्स को जगल करने होते हैं तो घबरा जाते हैं ना कि कैसे सब निभाएंगे, लेकिन here you are, जो आपने किया है ताकि आपसे इंस्पायर होकर काफ़ी और लिसनर्स भी इस पर काम कर सके। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लिसनर्स को जो सोच रहे हैं कि अपने करियर में कुछ बदलाव लाए या फिर अभी से रिस्टार्ट करना चाहते हैं अपने एजुकेशन को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
2: अभी भाई मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, जो हमारे नॉलेज का है, पढ़ाई का है, देर इज नो एज टू इट। अगर आप चाहो अभी, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट स्टडिंग, इट्स नेवर टू लेट टू गेन नॉलेज। लाइफ इज ऑलवेज, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, एवरीवन कैन टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम यू, बट नोबडी कैन विल एवर टेक योर नॉलेज अवे फ्रॉम यू।
1: Such a beautiful message, Ashni. It was great having you on air. I'm pretty sure कि काफ़ी लोग जो आपसे सुनेंगे आज इंस्पायर होंगे, एक बार फिर रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या चेंजेस उसको करना है। और जाते जाते आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपके क्वालिफिकेशन के लिए, बैचलर ऑफ अप्लाइड सोशल वर्क डिग्री के लिए, अ जॉब वेल डन।
2: थैंक यू सो मच अभी भाई। अगर आप नाटिया में हो कभी, प्लीज स्टॉप बाय द ग्लोरी कंपनी कैफे इन नाटिया, वी आर ओपन 7 days a week.
1: Oh, thank you so much for that. And once again, आपके स्टोरी से कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होंगे और आपसे फिर बातें होंगी। आशनी, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स और एंड कीप टचिंग द स्काई।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से।
1: थैंक यू। तो ये थी आशनी जो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने, जैसे कि आपने सुना है, इनके बारे में एक आर्टिकल था जिसको मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं लोग अपने लाइफ चैलेंजेस में जूझ रहे होंगे और स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर जो आप सक्सेस की स्टोरी सुने तो कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन ये मिल सकती है। अगर जो कोई ये कहानी आपके पास में भी है जो आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो buzz@humfm.com पर ज़रूर लिखिए, ताकि कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज जहां पर कुछ अच्छे आउटकम्स हैं इसके बारे में आपके साथ में चर्चा कर सकें और बातें कर सकें। तो ये थी आशनी माश, वंस अगेन उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमारे साथ में शेयर किया और इसी के साथ साथ आपको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, यही हमारी मोटिव थी। मूविंग ऑन, आपके लिए अगला जो गाना हम बजाने जा रहे हैं ये भी एक जर्नी की ही बारे में है।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: हम पर इट्स 3:16 PM और चेतक हमारा और आपका साथ रहेगा. आपकी बार प्रोग्राम में शामिल करते हैं शुभा मुद्गल को. और आपको भी अगर जो कुछ सुनना है, आपके भी कुछ फेवरेट गाने हैं जो इसे आप सुनना चाहेंगे वो नया, तो 5599 पर ज़रूर टेक्स्ट कीजिएगा. लेकिन जब जो ये अगला गाना है, जब तक इसे बजाते नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है.

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: People of New Zealand, Briscoe's $60 million King's Birthday Sale is on. With $60 million of stock reduced across all Manchester, electrical and the entire store. Shop Briscoe's $60 million King's Birthday Sale on now. See online for T's and C's.
3: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
4: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रेजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 grams जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
5: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
6: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
5: Saturday 18th July 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
6: Mashallah, bahut acha, very nice.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
11: क्या रिकॉर्ड हुआ? Well, you turned up surprisingly early, so having my bra pained by boys at intermediate, it wasn't great. And strapless bras, why do you hate them so much? But breastfeeding 3 kids, that's been your strong point. You really know how to express yourselves, pun intended. Thanks also for those early mammograms and being cancer-free, so already I've lived longer than both mum and nana did. Tēnā kōrua. I'm Stacey Morrison, and this is a love letter to my breasts. Get to know yours, visit breastcancerfoundation.org.nz.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
12: That's right, हम पर ये है जशिल और आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूँ अभी, और अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। इस हफ्ते जबकि बजट के बारे में भी बात हुई, तो थोड़ी देर में आपके लिए बजट से भी कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स लेकर आएंगे, जबकि बजट एट अ ग्लांस हम देखेंगे ताकि हमें भी पता रहे एज अ कॉमन टेम कि क्या कुछ इस कंट्री के इकोनॉमी को लेकर हो रहा है। ये सभी कुछ आपके साथ में बस थोड़ी ही देर में, सुनते रहिएगा। आपको भी कुछ अगर जो कोई गाना सुनना है तो 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा और आपके लिए ज़रूर इसे प्रेजेंट करेंगे उन्हें।

0: to Avineet.
1: जी हाँ, हम पर रवि का साथ है और हम बातें कर रहे थे बजट के बारे में, जिसे अनाउंस किया गया था मई 28 को। तो अगर जो आपने मिस आउट कर दिया था, तो बजट 2026 का जो पैकेज है, ये नेट ऑपरेटिंग पैकेज है 2.1 बिलियन पे एनम, और इसी बेसिस पर बजट को अनाउंस किया गया है, और जिसके तहत प्रोविजंस में ढेर सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। हेल्थ की अगर जो बात करें, तो 5.5 बिलियन इंक्रीज इनको फंडिंग के लिए मिला है फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विसेज के लिए, और साथ में कई और जगहों पर जो पैसों की बातें हैं बजट में, ये एलोकेट की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ बताया आपको, तो 1.8 बिलियन तक बताया गया है कि जो कैम्ब्रिज से लेकर पियरेरे एक्सप्रेसवे, ये जो रास्ता है, इस पर काम एलोकेट किया गया है 1.8 बिलियन तक। और इसके साथ में एजुकेशन को भी लेकर काफ़ी प्रोविजंस दिए गए हैं। 131 मिलियन डॉलर्स का पैकेज है टू स्ट्रेंथन टीचिंग एंड लर्निंग टू हेल्प स्टूडेंट्स मीट मैथ्स, और साथ में रीडिंग एंड राइटिंग के डिमांड्स को मीट करने के लिए 131 मिलियन डॉलर्स सेट असाइड किया गया है। इसके साथ में डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को लेकर भी काफ़ी बातें की गई हैं, और इसमें इम्प्रूवमेंट टू फैसिलिटीज़ एट मिलिट्री बेसिस अक्रॉस न्यूजीलैंड, ताकि यहाँ पर भी बेसिस को इम्प्रूव किया जाए मिलिट्री सेवा को, तो यहाँ पर भी प्रोविजन दिए गए हैं। इसके साथ में अगर जो आप और इसके डिटेल में जानना चाहते हैं, तो सोशल हाउसिंग एंड वेलफेयर को लेकर भी कुछ 69 मिलियन डॉलर्स को दिया गया है, सेट असाइड किया गया है फॉर 2,250 एडिशनल सोशल हाउसेज के लिए। तो और अगर जो डिटेल में आप इसे जानना चाहते हैं, तो treasury.govt.nz, जी हाँ, treasury.govt.nz वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर एक ग्लांस में समराइज करके आपके लिए जो बजट है इसके प्रोविजंस दिए गए हैं, जिसे आप भी पढ़कर फिर बाद में अंडरस्टैंड कर सकते हैं।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Driving you home.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने.
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत तो
5: आए आए बताओगे यार.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Monaco and Pukekohe. King's birthday sale on now with up to 60% off. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
8: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MNDNZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
9: Announcing Rebel's King's Birthday Sale on now. Get up to 40% off store-wide. That's up to 40% off clothing, footwear and more. Fit for a king, made for champions. There's at least 25% off the entire store on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
10: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Kabhi bhi, kahin bhi.
11: मैं अभी आपके साथ में हम पर कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और चलता रहूंगा 6 तक. और हमारे साथ में विनय शर्मा जुड़े हुए हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं. और हम के साथ में आप अपना जो फन एलिमेंट है अपने ड्राइविंग में लेकर आ रहे हैं. एंड कीप इंजॉइंग जस्ट चिल का ये प्रोग्राम है. इसके साथ में हमारे साथ में जैक, आपने भी मैसेज किया है, आप भी प्रोग्राम का मज़ा ले रहे हैं. थैंक यू सो मच, इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा. इसके अलावा राहुल है, ये सुन रहे हैं हाविक में. राहुल, आपका भी साथ देने के लिए आपको शुक्रिया. इसी तरह से आप भी साथ देते रहिएगा. और याद रहे कि बस थोड़ी देर में चार बजे पर आपके लिए समाचार होंगे और उसके बाद में एंटरटेनमेंट कंटिन्यूज. मैं हूं अभी आपके साथ में.

हम प्रजशील है और आपके लिए रोवा पर हम म्यूजिक स्टेशंस का चुनाव किया गया है ताकि आप भी इसे जाकर सुन सकें। अगर जो आप 60s 70s के गाने सुनना पसंद करते हैं तो आपके लिए हम रिवाइंड है, और 80s जुकबॉक्स यानी कि 80s के जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जो सुनना चाहते हैं 80s के गाने, आपके लिए भी 80s जुकबॉक्स है। इसके अलावा फिजी भजन्स का भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, साथ ही साथ में पंजाबी पंपिंग हिट्स के लिए चर्दी कला है, और उसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह। अगर जो आप भक्ति डिवोशनल कीर्तन सुनना चाहते हैं फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ में तो आप ये सुन सकते हैं फिजी कीर्तन संग्रह पर। इसके अलावा राहत फतेह अली खान का अलग एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि आप भी जितने लिसनर्स हैं उनके सूफी कवालियां सुनना पसंद करते हैं, ये ऑप्शन भी आपके लिए है। तो चेकआउट कीजिएगा रोवा पर, और साथ में हमारा हम फेसबुक पेज भी बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने एक वीडियो भी डाला है कि कैसे मिस्टर माइक अकेले में इंजॉय करते हैं, इसको भी चेकआउट कीजिएगा।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: फ्लो इवनिंग मैंने कहा, जहां पर आप सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रोग्राम कुछ इस तरह से, सुबह 7 पर स्थापना पूजा, फिर उसके बाद 8 बजे से चालीसा पाठ रहेगी बाय वेरियस मंदिर।
1: सोच रही
0: हूं, जानकारी के लिए
1: 0210299121
0: पर आप कॉल करें।

हम पर आपके लिए कुछ हमबल मेलोडियस नंबर्स लेकर आ रहे हैं, जबकि 4:20 हो चुके हैं, तो अब समय हुआ कि आपको उस स्टोरी में लेकर जाए वापस, जहां पर काकाही जनरल स्टोर के बारे में एक जो न्यूज़ है सामने आई है कि काकाही जनरल स्टोर एंड पोस्ट ऑफिस, जो कि मनुलाला एंड सन प्रोप्राइटर्स के नाम से जाना जाता है, काकाही में एक स्मॉल टाउन है जो कि साउथ ऑफ ताउमरनुई है। यहाँ पर बड़ी बात क्या है, इसमें एस्टोनिशिंग बात क्या है कि ये जो पर्सन चला रहे थे इस बिज़नेस को, मनुलाला, ये खुद 85 बरस के हैं और 70 ईयर्स तक इन्होंने इस बिज़नेस को लुक आफ्टर किया है इस रूरल टाउन में। यानी कि 70 ईयर्स तक इन्होंने खुद यहाँ पर काम किया है, इस बिज़नेस को चलाया है। और इससे बड़ी अचंभे की बात यह है कि ये बिज़नेस को इन्होंने टेक ओवर किया था अपने फादर से, जिनका नाम था दहिया, इन 1957, जबकि ये खुद स्कूल जा रहे थे उस समय। तो इतने लंबे अरसों के बाद में जो काकाही जनरल स्टोर है, ये अब अपना बिज़नेस अपने डोर्स क्लोज कर रही है। क्वाइट अ रिमार्केबल अचीवमेंट, जबकि इतने सालों तक इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है इस रूरल टाउन को, जो कि साउथ ऑफ ताउमरनुई है। और अगर जो आप जानना चाहते हैं इसका एग्जैक्ट लोकेशन, तो कुछ 20 मिनट्स साउथ ईस्ट है ऑफ ताउमरनुई इन द नॉर्थ आइलैंड। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस टाउन को ब्लूम होते इन्होंने देखा है अपने समय पर, जबकि इनके पिताजी आए थे यहाँ पर 1937 में। उस समय इस टाउन का पॉपुलेशन था कुछ जस्ट ओवर 3000 लोग इसमें बसते थे, और टाउन उस समय इनके मुताबिक वॉज क्वाइट बजिंग। तो अगर जो देखें कि इतने सालों के बिजनेस के चलाने के बाद में अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं एट द एज ऑफ 85, और जबकि 70 ईयर्स तक इन्होंने खुद अपने बिजनेस को चलाया है, तो कुछ 14-15 ईयर्स तक इनके डैड ने इस बिज़नेस को चलाया है, क्योंकि द बिज़नेस हैज़ बीन रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 88 ईयर्स अब तक। तो इसके पिताजी, मानू के पिताजी ने कुछ साल तक समय तक इस बिज़नेस को चलाया, उसके बाद में मानू ने भी इस बिज़नेस को चलाया, एंड ही इज़ फाइनली कॉलिंग इट अ डे। एक रिमार्केबल अचीवमेंट है कहीं ना कहीं, जब हम एली रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर मनुलाला जैसे लोग भी हैं जो 85 बरस तक काम करते ही रहे हैं, और शायद इनका पेशन या जुनून यूँ कहें यही था इनका बिजनेस। तो कुछ ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं जो हार्ड वर्किंग है, और इनके बारे में ये भी बताते हैं कि ये 7 डेज यहाँ पर अवेलेबल है और काम करते हैं अपने बिजनेस में, काकाही जनरल स्टोर्स। अगर जो उस रास्ते से जाना हुआ आपका, तो आप यहाँ पर जाकर इनसे मिल सकते हैं, जबकि कुछ ही दिनों में ये अपने इस बिज़नेस को काकाही में बंद कर देंगे।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री। सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
2: Beating pump prices is easy when you take a bus. And with 45 Auckland Transport bus routes that run at least every 15 minutes from 7 a.m. to 7 p.m. 7 days a week, chances are there's one going your way. Check the AT Journey Planner.
3: हम सब चाहते हैं कि रिसाइकल सही तरीके से हो, तो याद रखिए, प्लास्टिक बैग, ड्रिंक कार्टन और पुराने लैपटॉप अपने रिसाइकल बिन में मत डालिए। रिसाइकल सही करें, ये आपके हाथ में है। सर्च ऑकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमाकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ऑकलैंड।
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
5: Indelible Homes, your building expert.
6: Martin didn't think he needed a DVS system.
7: I've got a brand new home.
6: Does your brand new home have condensation?
7: Yeah.
6: New homes are often built tight, but a healthy, comfortable home needs to be able to breathe.
7: Is that what DVS does?
6: Yeah, DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology will make your home drier, healthier and more comfortable.
8: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
9: Non-stop Bollywood.
10: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
9: हम playing Bollywood's biggest hits.
11: That's right, we are हम playing Bollywood's biggest hits और आपका favorite Bollywood station है ये और इस पर मैं हूँ आपका साथी अवि। इस आवर पर आपसे और भी बातें करेंगे लेकिन अभी के लिए आपसे पूछना चाहते हैं, एक फन क्वीज है बॉलीवुड से लेकर। अगर जो हीरो नंबर वन गोविंदा है, बादशाह शाहरुख खान है, खिलाड़ी

हम पर आप सुन रहे हैं जस्ट चिल और मैं हूं अभी आपके साथ में। अक्सर हम स्पोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं क्योंकि इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन यू। आप हमेशा एक चैलेंज के लिए तैयार होते हैं, आप कहीं ना कहीं लाइफ गोल्स भी इसी से सीखते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि स्पोर्ट्स का एक अगली साइड भी है, यानी कि देयर इज़ अ साइड विच इज़ नॉट टू प्लेजेंट टू सी और टू हियर अबाउट। और इसी एक अनप्लेजेंट साइड के बारे में हम बात करेंगे जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी है। बस सुनते रहिए, हम थोड़ी देर में आपसे बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं एक बुरा नाम दे देती है।

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: May month is NZ Music Month. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. Presenting Back Your Backyard Beats, जहां हर गली, हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट, कल का ग्लोबल सेंसेशन. तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे? Tune in करो और अपने Backyard Beats को दो फुल सपोर्ट. Back Your Backyard Beats, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. And Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love.
2: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
3: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
2: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
3: MashaAllah, bahut acha, very nice.
4: Schools use fiber to study in virtual reality, whereas Kim used it to study her family's genealogy to discover she has a long-lost relative in Taupo who streams true crime podcasts about missing people that often begin with an ad from Chorus saying New Zealand runs on fiber.
5: Pop into New World North Island for great value every day. Get Proper Crisps chips select sizes $3.99 each, or Vitasoy UHT unsweetened almond coconut or oat milk 1 litre, $2.89 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में, और बात कर रहे थे कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स को एक बुरा नाम देती है. तो जबकि आज सुबह पेरिस सेंट जर्मेन और साथ में आर्सेनल के बीच में चैंपियंस लीग का खेल हुआ, तो ऐसे में इस फाइनल के बाद में पेरिस में कुछ 200 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जबकि वायलेंट क्लैशेस हुए और साथ में लोग काफ़ी अनरूली और वायलेंट हो चुके थे. तो ऐसे में कुछ 235 लोगों को अप्रीहेंड किया गया, जिसमें से 200 पीपल को लोगों को डिटेन किया गया है. तो एक फुटबॉल का एक अगली साइड ये भी है, जिसे फुटबॉल हुलीगन्स भी कहा जाता है. जो लोग मैच तो देखते हैं, अक्सर राइवलरी में एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी कर देते हैं, तो उनको फुटबॉल हुलीगन्स बुलाया जाता है. और ऐसे में स्पोर्ट्स को एक यूँ कहें एक दाग भी लगा देता है. तो ऐसे में यही हमारी कोशिश रहती है कि जो लोग अक्सर फुटबॉल में इन्वॉल्व रहते हैं, खासकर यूके में, तो इनसे अगर जो कभी आप फुटबॉल के बारे में पूछेंगे तो ये हमेशा यही कहेंगे कि इसका एक अनरूली एक बिहेवियर और या फिर एक ऐसा साइड है जो अक्सर लोगों के सामने नहीं आती है.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, 5 बज चुके हैं. मैं हूँ अभी आपके साथ में. दिस इज द फाइनल आवर ऑफ द शो जस्ट चिल्का. और 6 तक हमारा और आपका साथ बेजोड़ बना रहेगा. हम 104.2 FM साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. इस आवर पर भी अगर जो आपके पास में कोई डेडिकेशन से आप कुछ सुनना चाहते हैं तो 5599 इज योर नंबर. यहाँ पर आप भेज कर अपने जो रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स है इसे ओनेया हमारे साथ में सुन सकते हैं.

आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज साथ में अलका याग्निक को। और अगर जो यूं कहें कि टू वेदर सिस्टम्स आर सेट टू अनलीश मैसिव डाउनपोर्स, जी हां, दो वेदर सिस्टम के कारण ढेर सारा रेनफॉल हो सकता है अक्रॉस न्यूजीलैंड। लॉन्ग वीकेंड में अगर जो आप इसको एंजॉय करने के बारे में सोच रहे थे या फिर घूमने फिरने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। आप अपने प्लेन्स बनाने से पहले वेदर सिस्टम को देख ले। इस पर और भी जानकारी आपके लिए 6 पर समाचार में रहेगी, लेकिन अभी के लिए आप जो भी हो एंजॉय करते रहिए। न्यूज़ पर भी ध्यान धरिएगा, वेदर पैटर्न्स पर भी, क्योंकि मौसम जो है ये अक्सर बिना बताए कहीं ना कहीं बदल ही जाता है।

जश्न का कारवा है एंड दिस इज मी अवि कीपिंग यू कंपनी. तो आपको बता दूं, अगर जो किसी कारण से आप ब्रेकफास्ट का शो मिस कर देते हैं तो ऐसे में BF लिखकर 5599 पर भेजिए और यहां से आपको लिंक मिलेगा जिससे आप पूरा का पूरा उनका जो सेगमेंट है आप देख सकेंगे या फिर सुन सकेंगे. इसके अलावा अगर जो आप यू कहें अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट जो सेंडी और रुस्बे लेकर आते हैं इसे भी सुनना चाहते हैं तो ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजें और ये लिंक भी आपको यहां से मिल जाएगा.

अच्छा, ये मानने वाली बात है हम पर आपको जो बताने वाला हूँ कि इस लाइफ को लेकर हम काफ़ी स्ट्रेस करते हैं, इस लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं। और क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि ये लाइफ जो है ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। तो ऐसे में खुल के जिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीट ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
2: Kahani of Indelible Homes.
6: Shop deals fit for a king at The Warehouse. Like buy one, get one half price on toys, 50% off Garnier, and a JVC 55-inch smart TV for just $598. Hurry, ends Tuesday at The Warehouse. Conditions and exclusions apply.
7: Smart!

0: Now, Shift 4, the globally powered tap and pay solution for your business. Same local service, same low cost, with the latest payment technology. So tap into the future of payment for your business. Shift 4, Dakota.
1: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
2: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tu
3: maza. Hum, playing Bollywood's biggest hits.
4: आप सुन रहे हैं न्यूजीलैंड का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन और उस पर मैं हूं आपका साथी अभी बस थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ बना रहेगा। याद रखना हमेशा 104.2 एफएम साथ में रोवा पर आप हमें सुन सकते हैं। इसके अलावा रोवा के अलावा भी आप हम फेसबुक पेज यानी कि 104.2 एफएम पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं।

आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 12 से आपने हमारा साथ दिया, साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके साथ में हो जाएंगे ठीक 12 पर, जबकि पब्लिक हॉलीडे है तो पब्लिक हॉलीडे का प्रोग्राम लेकर आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। तो कल मुलाकात होगी आपसे। आज के लिए द वीकेंड इज स्टिल यंग, इंजॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड डू टेक केयर। कल आपसे मुलाकात होगी। बाय।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम टू द शो. मैं क्रिश संडे नाइट मेलोडीज लेकर आ गया हूँ. आज बहुत ही प्यारी बातें करेंगे आपके साथ होकर. आज के प्रोग्राम में गाने बहुत बजेंगे आपके लिए, क्योंकि रोमांटिक सेंशुअस बेहतरीन बेमिसाल बेस्ट गाने हम लेकर आएंगे. जो मेलोडियस गाने हैं वो आपके लिए हम शामिल करेंगे. संडे इट इज़. आज आखिरी दिन है ऑफ मई मंथ और कल जून की शुरुआत हो जाएगी. मिड ऑफ ईयर हम पहुंच जाएंगे. तो चलो बहुत यादें बनाते हैं साथ में मिलकर, प्यारी बातें करते हैं, खूबसूरत गाने आपको सुनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन भी प्यारे लेकर आया हूँ. मैं क्रिश आपके साथ दूंगा मिडनाइट तक. स्वागत है आपका, क्रिश का बहुत सारा प्यार.
2: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में कर.

संडे नाइट मेलोडीज जारी है और क्रिश का साथ है, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। तो बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका लॉन्ग वीकेंड बहुत ही अच्छी तरह चल रहा होगा। काफ़ी प्लान आपने किया है आई एम श्योर। कुछ लोग अभी ट्रैवलिंग करने के लिए निकल चुके हैं बाहर, आप रोवर के जरिए हमें सुन रहे हैं, आप ओकलैंड से बाहर है या न्यूजीलैंड के किसी जगह पर आप है, स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे इंटरनेशनल लिसनर्स हैं आपको भी शामिल करेंगे। न्यूजीलैंड से बाहर है लेकिन हमारे साथ आप चिपके हुए हैं थैंक्स टू रोवर, तो आपको भी बहुत ही जल्दी याद करेंगे। आज 31 मई है, किसी का जन्मदिन है, तो जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको भी याद करेंगे बहुत ही जल्दी। संडे नाइट मेलोडीज में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स आपको नजर करेंगे, आपको सुनाएंगे. आई एम श्योर ये गाने आपको बेहद पसंद आ रहे हैं. तो ऐसे गाने हैं जो संडे नाइट मेलोडीज के लिए सूट करता है. कुछ रॉकिंग, कुछ मेलोडीज, ये सारे कॉम्बिनेशन हम बनाकर लाएं. कुछ नए तो कुछ पुराने, कुछ ज़्यादा सुने हुए, कुछ कम सुने हुए. कुछ गाने ऐसे भी है जो आपने कुछ टाइम से नहीं सुना है, तो वो भी हम लेकर आएंगे आज आपके लिए. संडे नाइट मेलोडी सुनते रहो, क्रिश का साथ है.
2: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੂੰ ਗੋਲ ਨਾ ਵੇਚ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits today. Sunday Night Melodies mein kafi Bollywood information bhi main lekar aaya hoon aapke liye. Kuch science related information hai aur aniye taza tarin khabrein hain jo aapke saath hum share karenge. Alag alag cheeze aapko main sunaunga, bataunga. Gaane to of course variety bajenge aapke liye kyunki melodious gaane, kuch rocking gaane. Long weekend hai to combination of both aaj main lekar aaya hoon aapke liye. Imtiaz Ali ne reflect kiya hai on repeating collaborations. Is par jankari main aapko bahut hi jaldi दूंगा. बहुत ही A-listed डायरेक्टर है ये और इनके मूवीज जो बनते हैं बहुत ही अच्छा कमाल करता है. रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस भी होता है, बॉक्स ऑफिस पर हिट होते हैं इनके गाने, इनके गाने के फिल्मों के गाने और फिल्म भी. तो इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा जब इन्होंने रिपीटिंग कोलैबोरेशंस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा मिडनाइट तक.

विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Pop into New World North Island for great value every day. Get proper crisps, chips, select sizes $3.99 each, or Vitasoy UHT unsweetened almond coconut or oat milk 1 litre, $2.89 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: This King's Birthday weekend, save up to 70% off at Bargain Blinds and Curtains. Sleep like royalty in elegant chairs or prep for winter with thermal lined curtains. Shop the royal sale at bargainblinds.co.nz now.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
4: हाँ. अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
0: The beat of Bollywood
7: world's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है
0: दिल से दिल से
8: एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स तो हम लेकर आ रहे हैं और आप सुन पाएंगे बिकॉज दे आर बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स ओनली फॉर यू. लॉन्ग वीकेंड जारी है और क्रिश का साथ है, मिडनाइट तक हम आपका साथ देंगे. डायरेक्टर इम्तियाज अली ने रिवील किया है कि एक टाइम ऐसा था जब ये सेम एक्टर के साथ एक से ज़्यादा टाइम काम करने से इनकार करते थे. ही अवॉइडेड इट, वो नहीं चाहते थे कि एक से ज़्यादा बार दोनों काम करें. उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशंस विद रणबीर कपूर और दिलजीत दोसांझ ने इनका नज़रिया बदल दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इम्तियाज अली स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पार्टनरशिप्स काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आर्टिस्टिक ग्रोथ लेकर आ सकता है. और उन्होंने ये डिस्कस किया कि किस तरह से ट्रस्ट डिवेलप होता है थ्रू रिपीटेड कोलैबोरेशंस. और दिस रिमार्क्स ऑफर्ड इनसाइट इनटू हिज फिल्म मेकिंग प्रोसेस और कास्टिंग फिलॉसफी, क्योंकि इन्होंने अपने कास्ट को रिपीट भी किया है, क्योंकि थैंक्स टू रणबीर कपूर और दिलजीत दोसांझ की इनका नज़रिया बदल गया थ्रू कोलैबोरेशंस विद देम. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ और बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे आपके लिए.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Welcome back, everyone. You're listening to your number one humpling Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai, Sunday Night Melodies jari hai, long weekend. Aapke liye ye special program chal raha hai, jisme alag alag tarah ke gaane aapke liye hum lekar aa rahe hain, taki aap bhi agar ghar par hai, thoda bahut family ke saath time spend kar rahe hain, quality time spend karna bahut zaruri hota hai, ghar par agar aap baithe hue hain, जो भी आप कर रहे हैं हमारा साथ दे रहे हैं. होप यू आर गेटिंग थरली एंटरटेन्ड, क्योंकि यहाँ से गाने ऐसे ही कुछ हम लेकर आ रहे हैं आपको, आपके लिए कुछ मेलोडियस गाने तो कुछ बहुत ही रॉकिंग और अपबीट सॉन्ग्स भी आपके लिए रहेंगे. कुछ चार्ट बस्टर सॉन्ग्स भी है जो आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे. इस घंटे पर आपका स्वागत है. 12 बजे तक आपको हमारा साथ देते रहना है संडे नाइट मेलोडीज़ में.

31st मई है आज, आज है इस महीने का अंतिम दिन। अगर आपका जन्मदिन है, a very happy birthday everyone, celebrate आप करते रहो, और long weekend calls for a celebration, I'm sure घर पर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, आप enjoy कर रहे हैं, और हमें बहुत ही खुशी है इस बात को कि हम आपके खुशियों में शामिल हो रहे हैं, best wishes हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत सारा प्यार दिया होगा आपको, तो हमारी ओर से टू दोस सेलिब्रेटिंग और जिनका जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से। ये जो अगला गाना है आप सभी के लिए तोहफा हमारी ओर से, आप इन्जॉय करें और संडे नाइट मेलोडीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे आपके लिए और भी गानों के साथ और भी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ।

0: Pittsburgh's biggest hits.
1: What you hit the gun, Nate?
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: What are you planning? Shat pratishat tumko
4: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
5: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
4: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
5: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
6: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: At Woolworths, we go to great lengths to ensure only the finest quality meat makes the cut, like our fresh beef rump steak, on special at just $24.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
8: What's the occasion? Let us know. Come on into the Bottle-O.
9: Enjoy a Woodstock long weekend. Woodstock 6-packs only $19.99 each. And Woodstock 18-pack range $43.99 each. Thanks to the Bottle-O.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: एक के बाद एक आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स आपको सुनाते रहेंगे, बस आप हमारा साथ देते रहे. और देखा जाए तो बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे. कुछ साइंस से संबंधित जानकारी हमारे पास है. साइंटिस्ट ने कहा है कि दे रिवर्स्ड ब्रेन एजिंग विद ए सिंपल नेजल स्प्रे. टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी टेक्सास का ये रिसर्च है जो बहुत ही जल्दी आपके साथ हम शेयर करेंगे. सुनते रहो संडे नाइट मेलोडीज़ में. क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलेडीज जारी है. एक ब्रेन टीजर भी आपके लिए बहुत ही जल्दी हम लेकर आएंगे. एक सवाल पूछेंगे और आपका जवाब हमारे पास आप भेज सकते हैं 5599 पर. और मुझे देखना है कि क्या आपको सही जवाब पता है हमारे ब्रेन टीजर को लेकर. साइंटिस्ट ने कहा है कि इन्होंने ब्रेन एजिंग को रिवर्स किया है विद ए नेजल सिंपल नेजल स्प्रे. रिसर्चर्स ने एक ऐसा नेजल स्प्रे डिवेलप किया है जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और एनर्जी रिलेटेड प्रोसेसेस को रिस्टोर करता है इन द ब्रेन. इन एक्सपेरिमेंट्स मेमोरी और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है ओनली आफ्टर 2 doses. और ये इफेक्ट मंथ्स तक लास्ट कर सकता है. साइंटिस्ट ने का मानना है कि ये ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को टारगेट करता है जो एसोसिएटेड है विद एजिंग. और अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन इस काम से काफ़ी प्रॉमिसिंग एवेन्यू निकल कर आ रहा है फॉर डेमेंशिया रिलेटेड रिसर्च. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और 12 तक हमारा साथ रहेगा.

0: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ. ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग. प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार. आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे. ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट. बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स. गूगल PFSL टुडे एंड अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. द बीट ऑफ बॉलीवुड,
1: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: दिल से दिल तक आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
3: गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द शो. संडे नाइट मेलोडीज में मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, और 6 PM से लेकर अभी तक आपने साथ दिया. थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. ऐसे ही आपको हमारा साथ देना है, क्योंकि मिडनाइट तक हमारा साथ चलता रहेगा. लॉन्ग वीकेंड शो जारी है. आज 31 मई है, फाइनल डे ऑफ मई, और कल जून की शुरुआत करेंगे हो जाएगी. और जून महीने का वेलकम होगा, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में पहुँच जाएंगे. और फिर जैसे ही विंटर ख़त्म होने को आएगी, फेस्टिविटीज़ की शुरुआत हो जाएगी, और द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर विल रिटर्न, क्योंकि डेलाइट सेविंग भी आगे चलकर शुरू हो जाएगा. बट फर्स्ट, इस घंटे पर कुछ विंटर टिप्स मैं लेकर आया हूँ. विंटर के दौरान आप कैसे वार्म रह पाएंगे, सर्दी जुखाम से बच पाएंगे, इस पर भी बातें करेंगे बहुत ही जल्दी आपके साथ होकर. वेलकम बैक टू द शो, संडे नाइट मेलोडीज़ में मैं क्रिश आपका स्वागत.

विंटर की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है. एंड इट इज़ बीन क्वाइट कोल्ड ऑफिशियली विंटर शुरू होने से पहले भी, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद विंटर काफ़ी ठंड रहे. तो स्टेइंग वार्म बॉडी और क्लोथिंग को लेकर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि लेयरिंग बहुत ज़रूरी होता है और ये इफेक्टिव होता है देन वेयरिंग वन हैवी जैकेट. आप स्टार्ट कर सकते हैं विद मॉइस्चर विकिंग बेस लेयर जैसे मेरिनो वूल या फिर सिंथेटिक फैब्रिक. उसमें इंसुलेटिंग मिडल लेयर आप ऐड कर सकते हैं, फ्लीस या वूल. देन अ विंड प्रूफ वाटर प्रूफ आउटर लेयर, क्योंकि इससे हीट लॉस जो होता है ये कम होगा, क्योंकि हमारे हेड हैंड्स और फीट के द्वारा हीट लॉस हो सकता है. इसलिए वूल सॉक्स और थर्मल ग्लव्स डिफरेंस काफ़ी लेकर आ सकता है. अगर आप कोल्ड इंडोर्स में हैं तो एक हॉट वाटर बॉटल या हीटेड ब्लैंकेट भी आपको काफ़ी वार्म रख सकता है विदाउट हीटिंग द होल हाउस. ये भी मुमकिन एक तरीका होता है आपके लिए. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और टिप्स हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. सिर्फ रोवा पर.
1: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
2: Announcing Rebel's King's Birthday Sale on now. Get up to 40% off store-wide. That's up to 40% off clothing, footwear and more. Fit for a king, made for champions. There's at least 25% off the entire store on now at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी. बहुत कुछ होने को है, कुछ इवेंट्स होने को है, इस पर जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा. श्रीमद् भागवत कथा होने जा रहा है, इस पर जानकारी इज कमिंग अप नेक्स्ट. कुछ गाने सुनाते हैं और फिर उसके बाद में और बातें आपके साथ.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: सामाजिक सूचनाएं आप तक हम पहुंचाते हैं. हम पर आप सुन पाएंगे कहां पर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं. फ्री इवेंट्स है तो 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा की आयोजना की गई है. श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा यहाँ पर प्रचार रहेगा. और 5th-11th June होने जा रहा है तो 9:30 AM to 1 PM होगा. ये भी आप जाकर महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस आप जा सकते हैं. इसके लिए सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. एक दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 108

You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hit. Samajik Suchnaye mein kuch aur bhi suchnaye hamare paas se jo aap tak main pahunchana chahunga. Divya Shakti Charitable Trust ki or se Ramakrishna Mandir 25 Onslow Avenue Manukau mein ayojit kiya ja raha hai 108 Akhand Hanuman Chalisa Part. Ye 13 June ko hone ja raha hai. Sabhi dharm premiyon ko sadar amantran hai aur yahan par स्थापना पूजा चालीसा पाठ विभिन्न मंडलियों द्वारा होगा. हवन और आरती भी यहां पर होगी. तो 0210299 1219 पर आप संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी के लिए.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: संडे नाइट मेलोडीज जा रही है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा टिल मिडनाइट. और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स अभी लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, आप करते रहो, यहाँ से एंटरटेनमेंट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे. विंटर टिप्स आपको मैं दूंगा, होम हीटिंग और कम्फर्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, किस तरह से घर को आप वार्म रख पाएंगे. सर्दी जुकाम ज़्यादा हो सकती है ड्यूरिंग विंटर, जैसे ही मौसम बदलता है, तो वार्म रखने से, अपने घर को वार्म रखने से आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे. इस पर जानकारी अगले घंटे पर मैं लेकर आऊंगा आपके लिए. कुछ और बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं फिलहाल.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: Sunday Night Melodies जारी है and you're listening to your number one hum playing Bollywood's biggest hits. Sunday Night Melodies में इतने सारे hit और hot गाने हैं, Bollywood's biggest hits हम शामिल कर रहे हैं और एक के बाद एक आप एक नहीं दो नहीं तीन तीन गाने back to back सुन रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप enjoy कर रहे होंगे. More music, less talk, ऐसा ही कुछ हमें FM हम पर आप सुनते हैं और हम आपके लिए entertainment भरपूर लाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा music enjoy कर पाए और ऐसे गाने जो आपको पसंद है क्योंकि ऐसे ही चुनिंदा गाने आपके लिए हम लेकर आते हैं. बेस्ट, बेजोड़, बेहतरीन और बेमिसाल गाने जो सुनकर भी मज़ा आता है और ऐसे गाने जो आप बार बार सुनना भी चाहेंगे. तो ऐसा ही कुछ माहौल बना रहेगा टिल मिडनाइट. इस घंटे पर भी आपका स्वागत है. वेलकम बैक एवरीवन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. प्यारे गाने सुनाते हैं और इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: बैकयार्ड बैकयार्ड बीट्स जो एनजेड म्यूजिक मंथ रहा है मैंने भर आपने सुना, तो ये आज आखिरी दिन है 31 मई। हम सलाम करते हैं हमारे जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं, और बहुत ही जल्दी एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन लोकल आर्टिस्ट के गाने आपने सुने हैं, हमारे स्थानीय फनकारों को आपने सुना है और उनको सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ ही देर में इनके बारे में भी बातें करेंगे, तो आप सुनते रहो संडे नाइट मेलोडीज़। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। प्यारे गाने आपके लिए मैंने रखा है, और ये जो गाना है बहुत ही प्यारा है, पंकज उदास की आवाज़ में हमने लिया है, चिट्ठी आई है। एक ऐसा गाना जो जब भी सुनते हैं यादों की दुनिया में चले जाते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: NZ Music Month आज आखिरी दिन है क्योंकि मैं मंथ में आपने पूरा ये जो महीने भर में आपने सुना Back Your Backyard Beats जिसमें लोकल आर्टिस्ट के गाने आपने सुना वोट भी किया थैंक यू सो मच सोशल लव देने के लिए बहुत सारा आपका जो वोटिंग हुआ है हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म के जरिए भी टॉप 3 आर्टिस्ट को आपने चुना इनके गाने आप रोवा पर भी सुन पाएंगे आपने नील पटेल को सुना अविशी जैन साथ में आर्यन भाटिया भास्कर और द बेनाम्स को आपने सुना तो इनके गाने उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर सपोर्ट ऐसे ही हमारे लोकल आर्टिस्ट को आप सपोर्ट करते रहे ताकि इनको और प्रोत्साहन मिले और इनकरेजमेंट मिले टू प्रोड्यूस सम गुड क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर अस और इनको प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव जो आपने दिया है मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ हमारा साथ चलता रहेगा मिडनाइट तक

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce. Like New Zealand grown carrots or brown onions, 1.5 kg, a fresh deal at just $3 a pack. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
2: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज जा रही है. कुछ ही देर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनफिल्टर्ड सैंडी और रुज़बे के साथ में जो इंटरव्यू हुआ है विद WWE सुपरस्टार शेंकी सिंह के बारे में. एक 7-foot-tall रेसलर है ये. इन्होंने क्या क्या बातें की इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा. इट्स एन अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग अनफिल्टर्ड जो पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे. इसके अलावा यहाँ पर ब्रेकफास्ट कैचअप में क्या कुछ होने जा रहा है और कैसे आप ये पॉडकास्ट सुन पाएंगे इस पर भी बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा मिडनाइट तक. हमारे जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं आपको भला कैसे भूल पाएंगे. आपको याद करते हैं अगले गाने पर जो बहुत ही प्यारा गाना है. उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा.

0: Pinterest पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज जारी है और 31st मई आज है, लॉन्ग वीकेंड जारी है। जितने भी हमारे लवली लिसनर्स लॉन्ग वीकेंड का मज़ा उठा रहे हैं, आप ओकलैंड में हैं या फैमिलीज आए हुए हैं आउट ऑफ ओकलैंड आपसे मिलने के लिए और आपका साथ देने के लिए, तो उनको भी शामिल करते हैं। और अगर घर पर कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ गुड न्यूज़ है जो सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, सेलिब्रेट एवरी लिटल जो न्यूज़ हो, गुड न्यूज़ हो आपके लाइफ में, चाहे वो कोई अचीवमेंट हो, कोई उपलब्धि हो, उनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये लिटल थिंग्स जो होते हैं लाइफ में, इससे बहुत फ़र्क आता है। तो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी सेलिब्रेशन है, जो भी ओकेजन है, आप वो सेलिब्रेट करते रहो, क्योंकि यहाँ से आपके प्यारे गाने और एंटरटेनमेंट भरपूर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। क्रिश का साथ है, रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। इस घंटे पर भी आपका स्वागत है, वेलकम बैक एवरीवन, और सुनते रहो संडे नाइट मेलोडीज हमारे साथ।

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. क्या होता है inside WWE, चाहे वो क्या वो scripted drama है या real fighting होता है. ये जो unfiltered drive रिज़बे और सैंडी के साथ में interview हुआ है, former WWE superstar शैंकी सिंह के साथ में काफ़ी चीज़ों पर बातें हो रही है, तो आप ये ज़रूर देखें. ये शैंकी सिंह जो एक 7-foot-tall wrestler है, जिन्होंने small town in हरियाणा से global WWE stage तक पहुँचा. इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पर बातें किया जैसे कि द ट्रूथ अबाउट WWE, चाहे वो क्या वो स्क्रिप्टेड है या रियल है, द ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया, लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द WWE परफॉर्मेंस सेंटर, और भी बहुत सारी बातें हुई है. मैं आपको अगले कुछ गानों के बाद बताऊंगा कि क्या कुछ और आप सुन पाएंगे इस अनफिल्टर्ड ड्राइव में विद रिज़बे एंड सैंडी. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ और गाने फिलहाल आपको सुनाते हैं.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में बातें हो रही है और शेंकी सिंह के साथ इंटरव्यू हुआ है. 7 foot tall रेसलर है ये फ्रॉम हरियाणा. इन्होंने इस अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में रुजबे और सैंडी के साथ में इन चीज़ों पर और भी बातें की है. इंजरीज, रिस्क और फिजिकल टोल जो होता है ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग जो आप हम देखते हैं WWE पर. और इनका टाइम, शेंकी सिंह का टाइम वर्किंग विद सलमान खान इन द फिल्म भारत, ट्रूथ ऑन वाई सलमान खान इज लेट टू सेट्स, ये इस पर भी बातें होगी. अनटोल्ड स्टोरीज, लॉकर रूम रियलिटीज और कुछ और भी बातें जो फैंस को पता नहीं होता है, ये इस पर बातें होगी. और ऑल्सो फ्रॉम बींग ट्रेंड अंडर द ग्रेट खाली टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इनका स्टोरी ऑफ एम्बिशन, डिसिप्लिन एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, ये भी इन पर बातें होगी. क्या आप भी, अगर आप वंडर आपने किया है कि क्या WWE फेक होता है, ओ हाउ समवन एक्चुअली मेक्स इट देयर, ये एपिसोड आपका नजरिया बदलेगा. तो आप ये सुनना ना भूले, देखना ना भूले. ऑल्सो अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट रुजबे और सैंडी के साथ में मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. कुछ ही देर में आपके लिए हम बातें करेंगे अबाउट ब्रेकफास्ट कैचअप एज वेल. कुछ और गाने फिलहाल सुनाते हैं आपको.

पॉडकास्ट के बारे में बातें हो रही है तो ब्रेकफास्ट कैचअप ये भी आप सुने फ्यू बिट्स एंड कॉन्वर्सेशंस विजय और पूजा के साथ में फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. अगर आप टेक्स्ट करते हैं BF15599 तो आप कैचअप कर सकते हैं ऑन द पॉडकास्ट आप, क्योंकि आपको लिंक मिलेगा ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहे, फेमिलियर रहे कि क्या कुछ पॉडकास्ट हो रहा है, किन मुद्दों पर बातें किया जा रहा है. मैं कृष आपका साथ दे रहा हूँ. संडे नाइट मेलोडीज आपके लिए जारी है.

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. Weekday.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. और रात 12 तक हमारा साथ रहेगा. Interesting खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे. Home heating और comfort के बारे में बातें हो रही है. Curtains को आप जितना जल्दी हो सके बंद कर दें in the evening to trap heat inside. और आप draft stoppers door पर इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर कोई small gaps अगर हो उसको भी आप seal कर सकते हैं with towels या tape if needed. हीट वहाँ पर उन रूम्स को आप करें जहाँ जो आप यूज़ कर रहे हैं रादर देन द होल हाउस. आप बाकी दरवाजे बंद कर सकते हैं ताकि अगर आप सिर्फ लाउंज में बैठे हुए हैं तो लाउंज में हीट रिटेन रहे. सीलिंग फैंस ऑन लो इन रिवर्स मोड ये हेल्प कर सकता है टू पुश द वार्म एयर डाउन. और अगर आप हीटर्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको क्लियर ऑफ फर्नीचर रखें और नेवर लीव देम रनिंग अनअटेंडेड क्योंकि रिस्क भी हो सकते हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम हाँ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज आप सुन रहे हैं और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, स्वागत है आपका. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ रहेगा टिल मिडनाइट. दिस इज आवर फाइनल आवर. वेलकम बैक टू द शो एवरीवन. 31 मई है इनफैक्ट. दिसंबर तो अभी फिलहाल बहुत दूर है. आई विश दिसंबर होता और हम लोग सेलिब्रेट करते या 2027. लेकिन अभी भी इट्स नॉट टू फार अवे. मिड ऑफ द ईयर हम कल ऑफिशियली पहुँच जाएंगे. 6th मंथ में हम चले जाएंगे. और ये फाइनल आवा है टू बिड फेयरवेल टू द मंथ ऑफ मई. और जून को वेलकम करने के लिए हम तैयार है. इस घंटे पर कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं. क्रिश का साथ है, सुनते रहो संडे नाइट मेलोडीज़.

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और सुनते रहो क्योंकि और भी प्यारे टिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं अबाउट हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ वार्म ड्यूरिंग विंटर. विंटर काफ़ी कोल्ड और फ्लू लेकर आता है और काफ़ी लोग टाइम इंडोर्स बिताते हैं, तो हाथ को रेगुलरली धोना और अवॉइड टचिंग योर फेस टू मच. वार्म न्यूट्रिएंट रिच फूड खाए, जैसे सूप्स, स्ट्यूज और वेजिटेबल्स. विटामिन डी कैन ड्रॉप इन विंटर ड्यू टू लेस सनलाइट, तो गेटिंग सम डेलाइट एक्सपोजर या सप्लीमेंट्स इफ नीडेड आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना मेडिकल सलाह मशवरा आप ज़रूर लें. हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोल्ड वेदर थर्स्ट को रिड्यूस करता है, बट योर बॉडी स्टिल नीड्स वाटर, यह आप ना भूलें. तो आप ये ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits कुछ ही देर तक और हम आपके साथ देंगे प्यारे गाने चलो आपको और सुनाते रहेंगे ऑनलाइन लिसनर्स नाइट शिफ्ट वर्कर्स और जितने भी लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं आपको भी याद करते हैं अगले गाने पर क्रिश के साथ है और प्यारे गानों का सिलसिला आपके लिए जारी रहेगा ऑल द वे टिल

बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हम लेकर आते हैं. क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड की दुनिया में. हेमा मालिनी गेट्स इमोशनल ड्यूरिंग नेशनल ऑनर सेरेमनी. वेटरन एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन हेमा मालिनी इमोशनल हो गई जब ये एक्सेप्ट करने के लिए गई एक नेशनल ऑनर ऑन बिहाफ ऑफ हस्बैंड धर्मेंद्र. और उन्होंने कहा कि ये रिकॉग्निशन काफ़ी डीपली मीनिंगफुल रहा है उनके फैमिली के लिए. इस सेरेमनी ने सेलिब्रेट किया धर्मेंद्र's लॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा. फैंस ने प्रेज किया कपल्स इंड्यूरिंग पब्लिक बॉन्ड. और काफ़ी सिग्निफिकेंट अटेंशन मिला है अक्रॉस एंटरटेनमेंट मीडिया इस इवेंट को लेकर. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो संडे नाइट.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: संडे नाइट मेलोडीज यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. अब हमारी मुलाकात होती है कल. मैं आ जाऊंगा आपका साथ देने के लिए, जबकि लॉन्ग वीकेंड अभी जारी है और हमारा साथ आपके साथ रहेगा. कल मैं ब्रेकफास्ट शो लेकर आऊंगा, मंडे ब्रेकफास्ट शो पब्लिक हॉलीडे के दौरान. तो आप भी हमारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार रहे. कुछ ही घंटों में मुलाकात होती है. क्रिश का बहुत सारा प्यार.

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस तमा की लाइट्स पापा टोटो।
3: सोना संसार 138 ग्रेट साउथ रोड पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Umbura Cheku. जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: बॉलीवुड
3: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Yum. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है। 6 to 10 AM
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
0: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846 9934 फॉर सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई

0: यार नाटक ना कर, नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च तो भाई नचना ही पैंदा।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
4: ए गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

0: चाहे आप हम के ढिंचैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स .co.nz।

0: playing Bollywood's biggest hits. Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. आपका moment, Krish का magic, only on Hum.
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन. ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपका साथ देने के लिए आ गया हूँ. आज फॉर अ चेंज मंडे ब्रेकफास्ट शो में मैं आपका साथ दूंगा और लॉन्ग वीकेंड है तो ऐसे में मो म्यूजिक लेस टॉक ये भी चलता रहेगा आपके लिए. जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन से या फिर रोबा के जरिए या फिर आप अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या घर पर आप रेडियो पर हमें सुन रहे हैं, स्वागत है आपका. वेलकम टू द शो. मैं क्रिश आपका साथ दूंगा मिड डे तक और बहुत सारे प्यारे गाने आपको सुनाऊंगा, कुछ प्यारी बातें भी लेकर मैं आया.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient. Because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Night out with friends? See you there. Favourite band in town? Let's go! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
3: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
4: The Red Hot sale is on now at Mazda with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
5: इन दिनों का आपका फेवरेट गाना कौन सा है आप हमें जरूर बताएं 5599 पर टेक्स्ट करके कौन सा गाना आपके जहन में है जो आप गुनगुनाते रहते हैं आप सुनते रहते हैं आपको अच्छा लगता है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं और वो गाने भी आपके लिए हम पेश करेंगे नए पुराने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लॉन्ग वीकेंड प्रोग्राम के दौरान आपके लिए जारी है हम पर

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, the Bed Zara's King's Birthday Sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's Birthday Sale at Bed Zara's Manikau and Pukekohe.
2: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
3: Oh my, oh my, Race Off Road, greater than ever.
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Weymouth Road, way better buses.
4: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
3: Woody, no worries. MIT, A-OK.
4: Search AT, Better South Auckland Buses for details.
3: Airport, got your transport.
4: Then turn up and go.
5: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
7: मुझे भी।
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
8: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
9: Media voice complaints. How can I help?
0: My kids won't shut up.
9: I'm not sure that's our problem.
0: They keep reciting lines from one of your radio ads.
9: Aw, cute.
0: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
10: What do you want, son?
11: I want me some of that real southern chicken.
0: 28 times.
9: So where are you now?
0: Eating chicken.
12: Advertise with
13: Media Works.
12: New Zealand listens to us.
14: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
15: Zara le le tu maza.
16: Hum playing Bollywood's biggest hits.
17: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और मैं आपको बॉलीवुड न्यूज़ भी बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा क्या कुछ हो रहा है हमारे बॉलीवुड दुनिया में। खास तौर पर मैं आपको बताऊंगा अभिजीत ने चुनरी चुनरी रीमेक को क्रिटिसाइज़ किया है। ये सिंगर जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य, और इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी। जोया अख्तर ने कन्फर्म किया है थेफ्ट एट प्रोडक्शन हाउस, इस पर भी जानकारी हमारे पास है आपके लिए। मंडे ब्रेकफास्ट शो में मैं

ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और हमारा साथ रहेगा ऑल द वे टिल मिडडे 6 से 12 तक आपको हमारा साथ देना है. मो म्यूजिक एंड मो म्यूजिक आपके लिए रहेगा, आपके सारे फेवरेट ट्रैक्स जो एक एक करके हम पेश करेंगे जो आपको पसंद आ रहा है. और थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट कंपनी, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका साथ. और अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, आई एम श्योर काफ़ी लोगों की आदत होती है जल्दी जागने के लिए, इस पर भी बातें करेंगे बहुत ही जल्दी. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और आपको भी बस ऐसे ही हमारा साथ देना है क्योंकि म्यूज़िकल जर्नी हमारे साथ है, अमेजिंग म्यूजिकल जर्नी जिसमें आपके फेवरेट सॉन्ग्स हम पेश करते रहेंगे दिन में 12 तक.

इट्स मंडे फर्स्ट जून और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और एक के बाद एक आपके फेवरेट गाने हम पेश करते रहेंगे। प्यारे प्यारे गाने तो मैं आपको सुना रहा हूँ और अभिजीत भट्टाचार्य ने चुनरी चुनरी रीमेक को क्रिटिसाइज किया, इस पर जानकारी मैं आपको अगले घंटे पर दूंगा। कुछ और गाने आपको सुनाते हैं और जितने भी हमारे लिसनर्स हमें रोवा पर सुन रहे हैं आपका भी खास स्वागत है। आज द लाफ्टर कॉमेडी शो पर बातें करेंगे, द ग्रेट कॉमेडी नाइट ये होने जा रहा है। इसके अलावा आपके लिए कुछ सामाजिक सूचना है वो भी अगले घंटे पर लेकर आएंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज मंडे, 1 जून है आज, इस महीने का पहला तारीख है और पहला दिन है, आपका स्वागत करते हैं। और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडे ब्रेकफास्ट में, मैं आ गया हूं और लॉन्ग वीकेंड शो जारी है आपके लिए। आज लॉन्ग वीकेंड का आज अंतिम दिन है, लेकिन अभी दिन की बस शुरुआत ही हुई है। स्वागत करते हैं आपका, प्यारे प्यारे गाने भी आपको सुनाते रहेंगे प्रोग्राम में, आपको बस हमारे साथ चिपके रहना है, हमारा साथ देते रहना है। बॉलीवुड बिगेस्ट हिट सुनाएंगे, बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाए हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए हम शामिल करेंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
3: Dash! Savior of the lunchbox.
2: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
3: Dash!
4: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz.
5: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
6: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an Adored Fabric Draft Stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store.
3: Bunnings Warehouse.
6: Lowest prices are just the beginning.
7: Sarah Street is safer thanks to a fibre-powered speed camera, which is managed by the police, who use fibre to process DNA matches, which is a different match to the hunk Tracy found on a dating site that had an ad from Chorus saying New Zealand runs on fibre.
8: You know what that sound means, don't you? Another bloody meeting. But before you hit decline, this is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put a time in the calendar for you and your blood group to give blood or plasma. Your blood group could be friends, whānau, anyone who wants to save lives. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
9: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी All Together Auckland।
10: माँ, एक चपाती होती है ना? हाँ, एक चपाती मुझे भी।
11: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा, तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
10: मुझे भी।
11: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
3: The beat of Bollywood.
12: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: आपका मोमेंट, क्रिश का मैजिक, only on Hum.
13: बैक टू बैक सॉन्ग्स तो सुनाते हैं आपको, ताकि आपको भरपूर एंटरटेनमेंट मिलता रहे, जबकि लॉन्ग वीकेंड है, मोर म्यूजिक लेस टॉक, ऐसा ही कुछ होगा। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि हमेशा बहुत ही क्रिटिकल कमेंट्स ये देते हैं, क्रिटिसिज्म्स ये देते रहते हैं, और काफ़ी लोगों के प्रति इनका होता है ऐसा कुछ। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रीमेक वर्जन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग चुनरी चुनरी। ये अपडेटेड वर्जन इज़ एसोसिएटेड विद एक्टर वरुण धवन। अभिजीत ने आर्ग्यू किया है कि सर्टन क्लासिक सॉन्ग्स को में एक इमोशनल वैल्यू होता है, और इनको बहुत डिफिकल्ट होता है रिक्रिएट करना, और रिक्रिएशन होना भी नहीं चाहिए। और इसके कमेंट से ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गया अमंगस्ट फैंस अबाउट रीमेक्स इन मॉडर्न बॉलीवुड। और ये डिस्कशन रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडर टेंशंस जो नॉस्टैल्जिया और कंटेम्प्रेरी रीइंटरप्रिटेशन के बीच में होता है, जो काफ़ी लोग सहमत है तो कुछ लोग नहीं सहमत है, तो इट हैज़ स्पार्क्ड एन ऑनलाइन डिबेट। आप क्या सहमत है इस चीज़ से कि रिक्रिएशन होनी चाहिए नए टेस्ट और नए फ्लेवर के साथ, नए म्यूज़िक रिक्रिएशन होना चाहिए, आप हमें बताएं पुराने गानों का या नहीं। 5599 पर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और दिन में 12 तक हमारा साथ रहेगा, जारी है ब्रेकफास्ट शो आपके लिए।

0: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल. बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल.
1: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ.
2: आई वाज टोटली वर्थ इट. ओके,
1: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ.

0: कौन चुकी राज?
1: हाँ प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: आके

0: मिलना किसी से था मुझे, दूजा ही कोई मिल गया। नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाह,

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक।
2: गेट फ्री स्पोर्ट्स गियर फॉर योर स्कूल।
3: Good morning. We're heading for a high of 19 degrees today. Got a bit of rain on and off, and we're sitting on 17 right now. Checking the motorways, and they're all flowing pretty smoothly this morning. Nothing huge to report on. If you're leaving the CBD, heading towards the airport, 24 minutes is your drive time. From the Bombays into the city, 44 minutes. And the northwestern from Westgate to CBD, 24 minutes drive time.
2: Time to crunch on yummy apples and collect yummy stickers for your school.
4: Let the people save. Hurry, it's the final day of Briscoe's King's Birthday Sale with incredible reductions throughout the entire store. Flying out the door for one last day, so get saving. Stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
6: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz
11: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
12: आजरा ले ले तू मजा
13: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स यू आर लिसनिंग टू क्रिश
14: लेट्स गो
15: काफ़ी लोग उठ चुके होंगे और जल्दी उठने की आदत है चाहे लॉन्ग वीकेंड हो चाहे वीकेंड हो तो आज फॉर अ चेंज मंडे को जल्दी उठना पड़ रहा है लेकिन नॉट टू रश टू वर्क लेकिन आराम से आप अपना काम कर सकते हैं घर पर अगर आप अभी उठकर गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय का मज़ा ले रहे हैं या फिर ऐसे ही लेटे हुए हैं स्लीप इन कर रहे हैं और आँख बंद है लेकिन कानों से हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है हम की गूंज आप तक पहुँच रही है तो स्वागत है आपका दिन में 12 तक मैं कृष आपके साथ दूंगा

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
2: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
6: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा।
5: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
7: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और हमारा साथ रहेगा टिल मिडडे। जोया अख्तर ने कंफर्म किया है कि इनके प्रोडक्शन हाउस में चोरी हुई है। फिल्म मेकर जोया अख्तर ने कहा है कि इंसिडेंट एट हर प्रोडक्शन कंपनी हुआ है और इन्होंने डिस्क्राइब किया ये मैटर एज इंटरनल जॉब, सजेस्टिंग कि कोई है जो कोई इंडस्ट्री का है जो इनके कंपनी ऑपरेशंस के साथ एक्सेस करना चाह रहा है या कुछ ऐसे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है। रिपोर्ट्स ने इंडिकेट किया है कि वैल्यूएबल डाटा और मटेरियल्स अफेक्ट हो चुके हैं। अथॉरिटीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को और ये इंसिडेंट से ये बात सामने आया है कि काफ़ी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस विद इन प्रोडक्शन कंपनीज़ में कंसर्न्स आ रहे हैं और ब्रीचेज़ हो रहे हैं और चोरी हो रहे हैं, तो इस पर जोया अख्तर ने बहुत ही ज़्यादा चिंता व्यक्त किया है। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी ऐसे प्यारे गाने आपके लिए हम शामिल करते रहेंगे। सुनते रहो हम बॉलीवुड खबरों के साथ साथ बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स भी आप तक पहुँचाते रहेंगे।

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: मंडे ब्रेकफास्ट इट इज और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन. मंडे ब्रेकफास्ट शो में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फॉर अ चेंज मंडे को हमारी मुलाकात हो रही है इन द ब्रेकफास्ट शो और लॉन्ग वीकेंड है तो ऐसे में आपका साथ देने के लिए मैं आ गया हूँ. आपको एंटरटेन करने के लिए आ गया हूँ. आपको प्यारे गाने सुनाने के लिए मैं हूँ यहाँ पर और साथ ही में इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ. बॉबी डियोल ने डिस्कस किया है डिमांडिंग एक्शन फिल्म अल्फा के बारे में. वो भी आपके साथ हम बताएंगे जानकारी. क्या कुछ जानकारी हमारे हाथ लगा है. रीजनल सिनेमाज इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज टू ग्रो इन बॉलीवुड. ये भी जानकारी हमारे पास है. साथ ही में विंटर के दौरान कैसे आप अपने आप को और भी वार्म रख सकते हैं, सर्दी जुकाम से बच सकते हैं, आगे चलकर वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम टू द शो. Welcome back, everyone. Good morning.

आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. रीजनल सिनेमा जो होता है, जैसे मैंने कोक स्टूडियो रिलोडेड प्रोग्राम जब मैं लेकर आता हूँ ट्यूजडे नाइट्स को, आपको बताता हूँ कि रीजनल म्यूजिक का कितना इन्फ्लुएंस अब बॉलीवुड में होने लगा है. कोक स्टूडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, इनकॉर्पोरेटिंग रीजनल म्यूजिक इन टू जो मॉडर्न बॉलीवुड गाने. तो ऐसे ही रीजनल सिनेमा का इन्फ्लुएंस भी ग्रो होता नज़र आ रहा है. एक्ट्रेस हसलीन कौर ने हाईलाइट किया है इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल स्टोरी टेलिंग इन इंडियन एंटरटेनमेंट. इन्होंने नोट किया है कि काफ़ी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने रीजनल प्रोडक्शंस को वाइडर रीच दिया है, वाइडर ऑडियंस दिया है. अकॉर्डिंग टू कौर, फिल्म मेकर्स अब इंक्रीजिंगली इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, और ये शिफ्ट अब काइंड ऑफ स्टोरीज जो बन रहा है वो भी चेंज कर रही है, क्योंकि अब नेशनल अटेंशन उन स्टोरीज को मिलने लगा है. काफ़ी इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने कहा है कि ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स रहा है जिससे मॉडर्न इंडियन सिनेमा शेप हो रहा है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं, और भी प्यारे गाने आपको सुनाता हूं.

0: अगर बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: Hum. Accurate traffic.
2: Introducing KFC's fan feed menu.
3: Morning, we're heading for a high of 19 degrees today. Periods of rain developing this morning and sitting on 17 degrees right now. The motorways are flowing real smoothly this morning. Nothing huge to report on. If you're heading out to the airport from the city, 22 minutes is your drive time there. From the Bombay Hills into the CBD, 44 minutes. And if you see anything on the road that you'd like to report, 0800 44 3322.
2: A lineup of crowd pleasers, including legendary hot rods. KFC, feed the fans.
4: Keno could take something small and make it big. In fact, it could turn $1 into $250,000. Will your little go a long way? Play in store or online at mylotto.co.nz.
5: Here for all things Brinta. Sniffles on the sofa. Frosty footy games. Oh, ref. Cozy evenings with hot soup. And roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
6: If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
7: noodles,
6: or fashion,
7: gorgeous,
6: or even a shiny new appliance,
7: shiny,
6: money loops back. Get in the loop for cash back shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
8: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
9: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
10: The Beds R Us King's birthday sale is on now, with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, queen size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
11: Sun Tours ke successful March 2026 Best of India Tour ke baad, ab bookings open hai for Best of India September 2026 Tour. Delhi ke shopping, Agra ka Taj Mahal, Jaipur Amer Fort aur Elephant Ride, LP mein houseboat ka experience aur aanche Mumbai ki Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights aur 5-star accommodation, all for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
13: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन स्टेशन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और सारे नंबर वन सॉन्ग्स भी हम प्ले करते हैं बिकॉज बॉलीवुड के जितने भी हिट और हॉट गाने हैं बिगेस्ट हिट्स है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं कुछ और जानकारी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे अबाउट विंटर टिप्स खास तौर पर कहा गया है कि फूड और न्यूट्रिशन ये बहुत ही ज़रूरी होता है वार्म मील्स आप ले जो मोस्ट सेटिस्फाइंग होता है और रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर सूप करीज या पॉरेजेस या बेक्ड वेजिटेबल्स आप ले जिंजर गार्लिक सिनेमन और ट्यूमरिक भी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फॉर वार्म्थ और इम्यून सपोर्ट हाई प्रोटीन मील्स आपको बॉडी को मदद करेगा टू मेंटेन हीट वार्म फ्लूइड्स आप ज़रूर ले जैसे टी हर्बल इन्फ्यूजन्स या ब्रॉथ इंस्टेड ऑफ आइसी ड्रिंक्स क्योंकि सर्दी जुकाम इससे दूर हो सकती है और यू फील द वार्म्थ जब आप ऐसे न्यूट्रिशनल फूड का सेवन करते हैं मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: ब्रेकफास्ट शो जा रही है एंड इट इज मंडे. फॉर अ चेंज मंडे ब्रेकफास्ट शो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए. 1 जून है आज, फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ. और पहले इस दिन की शुरुआत आपने हमारे साथ किया, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा. 6 AM टू अभी तक आपने हमारा साथ दिया, लेकिन अभी भी 12 तक आपको हमारा साथ देना है. इस घंटे पर इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया हूँ, खासतौर पर विंटर के दौरान कुछ हेल्पफुल टिप्स मैं लेकर आया हूँ. अबाउट नेक्स्ट जो टिप है वो ड्राइविंग और आउटडोर सेफ्टी पर रहेगा. साथ ही में जो बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं. और अगले जो हमारा न्यूज़ रहेगा बॉलीवुड पर, दैट विल बी ऑन बॉबी डेओल के बारे में, कि इन्होंने अपना जो एक्शन फिल्म है अल्फा के बारे में क्या कहा है, इस पर जानकारी मैं दूंगा. आपको बस हमारा साथ देते रहना है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और ब्रेकफास्ट शो जारी है आपके लिए ओनली ऑन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
4: Biggest hits.
5: Budget Gandhi.
6: You're listening to Krish.
7: Let's go!
8: ब्रेकफास्ट शो में एक बार फिर आपका स्वागत है. बैक टू बैक सॉन्ग्स में आपको सुना रहा हूँ प्यारे प्यारे गाने. ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद आ रहे हैं वही हम आपके लिए इंक्लूड कर रहे हैं. और काफ़ी नए और पुराने गाने, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आपके लिए रहेगा. ओनली ऑन हम. मंडे है, 1 जून है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. बस कुछ ही देर में मैं याद करूँगा उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है. 1 जून है. अगर आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम कहेंगे बहुत ही जल्दी. फिलहाल कुछ और प्यारे गाने सुनाते हैं और इस ब्रेक के बाद में आपको मैं ये भी बताने जा रहा हूँ अबाउट बॉबी डियोल्स डिस्कशन ऑन हिज डिमांडिंग एक्शन फिल्म अल्फा. और इसमें एक अलग किरदार ये निभाने जा रहे हैं, अलग अंदाज में नजर आएंगे. इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. कॉमेडी नाइट पर भी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ इसी शिफ्ट में. तो इसके लिए बस आप हमें सुनते रहे और हमारा साथ देते रहे.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Fuel savings at gas today.
3: They're going for a high of 19 degrees today, almost there, 18 at the moment, and just a bit of rain here and there. Checking your motorways, and they're all flowing smoothly at the moment. If you're leaving the CBD heading to the airport, 24 minutes is your drive time. From the bottom of the Bombay Hills through to the CBD, 44 minutes. And if you do see anything on the road you'd like to report, 0800 443 322.
2: Enjoy fuel savings and collect points when you scan your Everyday Rewards card at gas.
4: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
5: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy three participating products and scan your Everyday Rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
6: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
7: जबरदस्त हिट्स
8: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
7: Playing Bollywood's biggest hits.
9: मंडे ब्रेकफास्ट शो जारी है, 1 जून आज है, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ मो म्यूजिक लेस टॉक, ऐसा ही कुछ हो रहा है और इन बिटवीन आपके लिए बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ रहे हैं। बॉबी डियोल ने कहा है कि इनका जो फिजिकली डिमांडिंग नेचर ऑफ फिल्मिंग अल्फा, ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। इन्होंने डिस्क्राइब किया है दी एक्शन सीक्वेंस एज रियलिस्टिक और चैलेंजिंग। इन्होंने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन किया था जो नेसेसरी था टू अचीव द डिजायर्ड इंटेंसिटी, और एक्टा ने अपने को स्टार्स को प्रेज किया है फॉर हैंडलिंग डिफिकल्ट सीन्स। ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो रहा है टू जनरेट एंटिसिपेशन और एक्शन फिल्म ऑडियंसेस के लिए ये फिल्म बहुत ही अलग होने को ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत ही अलग होगा। आपने बॉबी डियोल को अलग अलग किरदारों में देखा है और एनिमल में भी देखा है, एक बहुत ही अलग एक्शन रोल को निभाते हुए। अभी इस अल्फा में ये और भी अलग अवतार में आ रहे हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और भी बॉलीवुड इन्फॉर्मेशन आपके लिए शामिल करते रहेंगे।

You're humming along with Krish on your number one humpling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath dunga midday tak aur Monday breakfast show jari hai. Long weekend hai aaj. Kafi log aaram kar rahe hain aur kafi log taiyari kar rahe hain. Ghar ka kaamkaaz ho raha hai. Saaf safai bhi aap kar rahe hain. Ya kuch log bas aaj ke din aaram hi karna chahte hain kyunki I'm sure the last 2 days may have been really busy for you. To aap hamara saath dete rahe. Kuch hi der mein main aapko unfiltered drive podcast ke bare mein baatein karunga. Sandy aur Ruzbe ne interview kiya है फॉर्मर WWE सुपरस्टार शेंकी सिंह से बातें करते हुए 7-foot-tall रेसलर है ये और क्या कुछ बातें हुई किन मुद्दों पर बातें हुई इस पर कुछ डिटेल में बातें करेंगे बहुत ही जल्दी और पॉडकास्ट आप कहां पर देख पाएंगे कैसे देख पाएंगे इस पर भी जानकारी मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं अब मुलाकात अगले घंटे पर होती है विद मोर इन्फॉर्मेशन मोर म्यूजिक और मोर मस्ती

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: Good morning, everyone. Welcome back to the show. You're listening to Monday Breakfast Show, and I'm Krish. आपके साथ दे रहा हूँ. First June आज है. आज June का पहला तारीख है. पहला दिन है. आपका स्वागत है करता हूँ. आपका जन्मदिन है, तो आपको भी बहुत ही जल्दी मैं याद करूँगा. लेकिन आज मैं आपका स्वागत करता हूँ क्योंकि mid of the year हम आ चुके हैं और बहुत ही तेजी से समय भागता जा रहा है और ऐसे ही साल भी आगे बढ़ता जा रहा है. और इन नो टाइम विंटर ख़त्म हो जाएगा, फिर फेस्टिविटीज़ एक के बाद एक आने शुरू हो जाएंगे. एंड द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जैसे मैं कहता हूँ, वो रिटर्न होगा और हर कोई अलग अलग मूड में आ जाएंगे. चाहे वो हॉलीडे प्लानिंग हो, चाहे वो बाहर जाना हो, या फिर घर पर कुछ ऑर्गेनाइज़ करना, कुछ ओकेजन आने वाला है, कुछ इवेंट के बारे में आप सोच रहे हैं, ये सभी कुछ एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगे. मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. इस घंटे पर भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स में पेश करता रहूँगा और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी आपको बताऊंगा. आपको बस हमारा साथ देते रहना है.

अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ। WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी। और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे, द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल, ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया, लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर, रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग, साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज और लॉकर रूम रियलिटीज़ और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है, इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी। तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, इंस्पायर मीडिया वर्क्स जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं। आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
3: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
4: मुझे भी।
3: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए।
5: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
6: We've got double glazing.
5: Have you still got that cold, damp feeling?
7: Yeah, we do.
5: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
8: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों? क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
11: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane. Azara le le tum aza. Hum, playing Bollywood's biggest hits.
13: ब्रेकफास्ट शो जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ और सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम लेकर आते हैं। 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर ओकलैंड की ओर से 5-11 June महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 New North Road ईडन टेरेस, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होगा। श्री राधा कृष्ण मंदिर और ओकलैंड इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है 5-11 June के बीच में और सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है। कुछ और भी हमारे पास जानकारी है, सामाजिक सूचनाएं हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. मिड डे तक हमारा साथ रहेगा. कुछ सामाजिक सूचनाएं भी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाओ में 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ होने को है 13 जून को. सारे धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. 7 to 8 AM स्थापना पूजा होगा. 8 AM टू 6:30 PM चालीसा पाठ होंगे विभिन्न मंडलियों द्वारा. तो हवन और आरती के लिए आप यहां पर जा सकते हैं. प्रसाद और महाप्रसाद भी दिया जाएगा. और भी जानकारी के लिए आप 021-0299-1219 पर कांटेक्ट कर पाएंगे. और याद रहे सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है 13 जून को जहां पर 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा आपके लिए. कृष्ण का साथ है. और भी आगे बढ़ते हुए और भी प्यारे गाने आपके नाम.

0: Powered through Miss with Morning Fresh.
1: Let the people save. Hurry, it's the final day of Briscoe's King's Birthday Sale with incredible reductions throughout the entire store. Flying out the door for one last day, so get saving. Stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 2799439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: A very good morning, everyone. Welcome back to the show. Main Krish aapka swagat karta hoon. 1st June aaj hai aur Monday breakfast show mein main Krish aapka saath de raha hoon aur 6 AM to 11 AM tak aapne hamara saath diya. Thank you so much. Ye hamara final hour hai and welcome back to the show. Jitne bhi hamare pyare listeners hai, aaj main aapko bataunga about scientist ne kya discover kiya hai about हिडन गट ब्रेन सर्किट जो प्रोटीन क्रेविंग्स को ट्रिगर करता है. साथ ही में विंटर के दौरान कैसे आप और भी वार्म रह पाएंगे, इस बार बात करेंगे ड्राइविंग एंड आउटडोर सेफ्टी और स्किन एंड बॉडी किया, अगर इस पर भी हमारे पास अगर समय रहता है तो जानकारी देंगे. इस घंटे पर मो म्यूज़िक रहेगा आपके लिए, एक के बाद एक सॉन्ग्स, बैक टू बैक सॉन्ग्स, ये सभी कुछ लेकर आएंगे. लॉन्ग वीकेंड आप इन्जॉय करते रहो, यहाँ से प्यारे गाने, एंटरटेनमेंट और अमेजिंग म्यूजिकल जर्नी जो हमारे साथ हमेशा होता है वो बरकरार रहेगा. क्रिश का साथ है. वेलकम बैक.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: बातें करते हैं कुछ ऑन आउटडोर सेफ्टी के बारे में ड्यूरिंग विंटर. ये बहुत ज़रूरी होता है. ड्राइविंग करते हुए ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बाहर जो कंडीशन है वो काफ़ी कोल्ड है और आइसी कंडीशंस हो सकते हैं. तो अपना स्पीड को आप रिड्यूस करके रखें, कंट्रोलेबल लिमिट में रहे आप और इंक्रीज़ करें फॉलोइंग डिस्टेंस. ये बहुत ज़रूरी होता है. और वॉच फॉर ब्लैक आइस इन शेडेड एरियाज. ओकलैंड में तो शायद पीक विंटर के दौरान ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ध्यान रखें. कीप योर फ्यूल टैंक एटलीस्ट हाफ फुल इन केस ऑफ डिलेज जो हो सकते हैं. और इमरजेंसी किट, बेसिक इमरजेंसी किट भी कैरी करना ज़रूरी होता है with a torch, blanket, water या snacks. और proper footwear पहनना बहुत ज़रूरी है when walking outside, क्योंकि slippage और slipping ये भी बहुत common हो सकता है wet surfaces पर. तो इस पर भी ध्यान रखें. स्किन और बॉडी केयर, ये शायद आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है इस पर भी जानकारी मैं आपको दूंगा बहुत ही जल्दी. कृष के साथ है.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Stretch your budget further this long weekend at Mitre 10. Cozy up your home with 20% off Microthermic heaters. Or tidy up with a Lawnmaster 149cc petrol lawnmower, now $299. T's and C's apply. On now at Mitre 10.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
4: This King's Birthday weekend, save up to 70% off at Bargain Blinds and Curtains. Sleep like royalty in elegant chairs or prep for winter with thermal lined curtains. Shop the royal sale at bargainblinds.co.nz now.
5: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल। हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
6: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर। यार
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424।
9: जबरदस्त हिट्स
10: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
9: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
10: हम
11: विंटर काफ़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लेकर आता है, ठंड काफ़ी हो जाती है स्पेशली अर्ली मॉर्निंग में, और कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा होता है। तो स्किन और बॉडी केयर पर भी ध्यान देना होगा। कोल्ड एयर और इंडो हीटिंग आपके स्किन को ड्राई बहुत ही क्विकली कर सकता है, इसलिए थिकर मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेशन रखा गया। लेकिन आप ज़रूर सलाह मशवरा लें अपने प्रोफेशनल से अगर आपको कुछ पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र चाहते हैं आप। और आप यहाँ पर लिखा गया है कि आप मॉइस्चराइज़र का एप्लीकेशन शावर के बाद कर सकते हैं टू लॉक इन मॉइस्चर। लुक वार्म शावर्स आर बेटर देन हॉट वंस, क्योंकि इससे वेरी हॉट वाटर से नेचुरल ऑयल्स स्ट्रिप ऑफ होते हैं आपके स्किन से, और लिप बाम करेक्ट लिप्स को प्रिवेंट करता है, और हैंड क्रीम बहुत ही यूज़फुल होता है अगर आप काफ़ी ज़्यादातर आउटसाइड रहते हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही हमें मौका मिलता है।

मंडे ब्रेकफास्ट शो जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा एक रिसर्च पब्लिश किया गया 28 मई ऑफ दिस ईयर, जहाँ पर रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया एक बायोलॉजिकल पाथवे जो गट के साथ कनेक्ट होता है और ब्रेन को कनेक्ट करता है और जो एक्टिवेट करता है व्हेन प्रोटीन लेवल्स बिकम टू लो. ये सर्किट एनकरेज करता है एनिमल्स टू सीक प्रोटीन रिच फूड रादर देन शुगरी अल्टरनेटिव्स. और साइंटिस्ट ने कहा है कि ये मैकेनिज्म हेल्प मेंटेन करता है न्यूट्रिशनल बैलेंस. इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हुए या इस रिसर्च से ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है कि नॉलेज ऑफ एपेटाइट और भी इम्प्रूव हो सकता है, एपेटाइट रेगुलेशन इनफेक्ट और भी इम्प्रूव हो सकता है, साथ ही में डाइटरी बिहेवियर भी इम्प्रूव हो सकता है. इस डिस्कवरी से आगे चलकर अब फ्यूचर ओबेसिटी और न्यूट्रिशन रिसर्च को और भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ, कुछ ही देर तक और हमारा साथ रहेगा मंडे ब्रेकफास्ट शो में.

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।

0: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods।
1: Stretch your budget further this long weekend at Mitre 10. Cozy up your home with 20% off Microthermic heaters. Or tidy up with a Lawnmaster 149cc petrol lawnmower, now $299. T's and C's apply. On now at Mitre 10.
2: Let the people save. Hurry, it's the final day of Briscoe's King's Birthday Sale with incredible reductions throughout the entire store. Flying out the door for one last day, so get saving. Stores open till 9 tonight at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
4: Put your head to Gandhi.
5: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
6: मंडे ब्रेकफास्ट शो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। एन्जॉय योर लॉन्ग वीकेंड जो अभी बाकी का टाइम रह गया है। और कल हमारी मुलाकात होती है नाइट कैफ़े में, ट्यूसडे नाइट को हम लेकर आएंगे आपके लिए 8 to 9। सबसे पहले तो रहेगा आपके लिए कोक स्टूडियो रिलोडेड और नाइट कैफ़े, अदरवाइज मिड नाइट तक चलता रहेगा हमारे साथ। कल मुलाकात होती है। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। कृष का बहुत सारा प्यार।